मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: साथ में मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्वयुद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में सातवें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये पंक्ति सुनते ही मन में देशभक्ति, प्रकृति की सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता की एक जीवंत तस्वीर उभर आती है। ये सिर्फ एक देश का वर्णन नहीं बल्कि एक भावना है, जहां हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति एक साथ मिलकर भारत बनाती है। खेतों की हरियाली, नदियों की पवित्रता, पर्वतों की ऊंचाई और लोगों के दिलों की सादगी सब मिलकर इस देश को और सुंदर और प्यारा बनाते हैं।

तुम कब सुमरोगे राम? जीवन का दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जिसमें हम अपने बीते हुए समय और खोए हुए अवसर को साफ साफ देख सकते हैं। हम अपने जीवन का कितना समय व्यर्थ की बातों में, अनावश्यक चिंताओं में और क्षणिक सुखों में गवा देते हैं, और जब कभी आत्मा की आवाज आती है तो हम उसे टाल देते हैं। अभी नहीं, बाद में, अब तुम कब सुमिरोगे राम? कबीरदास की यह अत्यंत प्रसिद्ध और गहरी आध्यात्मिक रचना है। ये पद मनुष्य को समय रहते ईश्वर स्मरण करने की प्रेरणा देता है।

जब जब हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित होती है, तब तब भक्त की पुकार और गहरी हो जाती है। मीरा कहती है, विरे बुझावन अंतरी आओ, हे प्रभु मेरे हृदय में आकर इस विरह की अग्नि को शांत करो। मीरा जी अपने आराध्य श्री कृष्ण से विनती करती है कि उनके अंतर्मन में विराजमान होकर उस पीड़ा को दूर करें जो उन्हें उनके वियोग से सताती है। ये केवल प्रेम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की तीव्र आकांक्षा है।

शनि देव धर्म और न्याय के ऐसे देव हैं जो कर्म के अनुसार फल देते हैं। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय भी आता है और श्रद्धा भी, क्योंकि वे अनुशासन, धैर्य और सत्य के प्रतीक हैं। शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है। जो जैसा कर्म करता है शनि देव वैसा ही फल देते हैं। वे अन्य देवताओं की तरह केवल कृपा नहीं करते बल्कि न्याय करते हैं। इसी कारण उनकी दृष्टि को लोग गंभीरता से लेते हैं।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: समाज केवल लोगों का समूह नहीं, बल्कि विचारों, मूल्यों, परंपराओं, संघर्षों और सपनों का वह जीवंत ताना बाना है जिसमें हम जन्म लेते हैं, पलते बढ़ते हैं और अंततः अपने अनुभव छोड़ जाते हैं। समाज हमें पहचान देता है और हम समाज को दिशा। आज का यह चिंतन किसी उपदेश का रूप नहीं, बल्कि आत्ममंथन का आमंत्रण है कि हम अपने समाज को कैसे देखते हैं, उसमें अपनी भूमिका को कैसे समझते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा समाज गढ़ना चाहते हैं। समाज शब्द सुनते ही हमारे मन में परिवार, मोहल्ला, गांव, शहर, देश सब एक साथ उभर कर आते हैं। वास्तव में समाज इन सब का समन्वय है। व्यक्ति अकेला रहकर न तो सुरक्षित रह सकता है, न ही अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकता है। समाज ही वह आधार है जो व्यक्ति को संस्कार देता है, भाषा देता है, संस्कृति देता है और जीवन जीने की दिशा दिखाता है। भारतीय परंपरा में समाज को सह अस्तित्व का प्रतीक माना गया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ व्यक्ति की उन्नति समाज की उन्नति से जुड़ी मानी गई है। परंतु समय के साथ समाज का स्वरूप बदला है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार तक की यात्रा, ग्रामीण परिवेश से शहरी जीवन शैली की ओर बढ़ते कदम, ये सभी परिवर्तन समाज की गतिशीलता को दर्शाते हैं। आज का समाज दो ध्रुवों के बीच खड़ा दिखाई देता है, परंपरा और आधुनिकता। एक ओर हमारी सांस्कृतिक जड़ें हैं जो हमें मर्यादा, सहिष्णुता और सामूहिकता का पाठ पढ़ाती हैं, तो दूसरी ओर आधुनिकता है जो स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों की बात करती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इनमें से किसी एक को पूरी तरह नकार देते हैं। परंपरा के नाम पर रूढ़ियां समाज को जकड़ लेती हैं, तो आधुनिकता के अंधानुकरण में मूल्य बिखरने लगते हैं। आज के समाज की आवश्यकता है संतुलन, ऐसा संतुलन जहां परंपरा से संस्कार लिए जाएं और आधुनिकता से वैज्ञानिक सोच। समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई है परिवार। परिवार में ही बच्चे पहली बार प्रेम, अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी का अर्थ समझते हैं। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, ये सभी मिलकर व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। आज के तेज रफ्तार जीवन में परिवार का स्वरूप

0: सिमट रहा है। संवाद की जगह स्क्रीन ने ले ली है। एक ही घर में रहते हुए लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में समाज का यह दायित्व बनता है कि वह परिवार को फिर से संवाद, संवेदना और सामूहिक समय का महत्व समझाए। शिक्षा समाज का वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, परंतु शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं बल्कि बेहतर नागरिक बनाना भी है। आज हमें डिग्रियों की भीड़ तो दिखाई देती है, लेकिन संवेदनशीलता, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की कमी भी उतनी ही स्पष्ट है। एक सशक्त समाज वही है जहां शिक्षा प्रश्न पूछना सिखाए, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना सिखाए और विविधता में एकता का सम्मान करना सिखाए। यदि शिक्षा केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित रह जाए तो समाज सहयोग की भावना खो देता है। तकनीक ने समाज को अभूतपूर्व गति दी है। आज सूचनाएं उंगलियों पर है, दूरियां सिमट गई है और दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है। लेकिन हर सुविधा के साथ एक चुनौती भी आती है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति को मंच दिया, पर साथ ही अफवाहों, नफरत और आभासी दिखावे को भी बढ़ावा दिया। आज समाज को यह समझने की जरूरत है कि तकनीक साधन है, साध्य नहीं। इसका उपयोग मानवीय मूल्यों को मजबूत करने के लिए हो, न कि उन्हें कमजोर करने के लिए। किसी भी समाज की मजबूती इस बात से आंकी जाती है कि वहां सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सुरक्षित है। स्त्री पुरुष समानता, जाति और वर्ग के भेदभाव से मुक्ति, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता, ये सभी समाज की परिपक्वता के संकेत हैं। आज भी कई क्षेत्रों में असमानता मौजूद है। कानून बने हैं, योजनाएं बनी है, पर मानसिकता बदलना सबसे कठिन कार्य है। समाज को यह समझना होगा कि समानता किसी को कमजोर नहीं करती बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि समाज कोई स्थिर संरचना नहीं बल्कि निरंतर बहती नदी है। हम सब उस नदी के कण हैं। हमारी छोटी छोटी कोशिशें ही समाज की दिशा तय करती है। आइए हम यह संकल्प लें कि अपने स्तर पर समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, घर से, कार्यस्थल से और अपने व्यवहार से, क्योंकि जब व्यक्ति बदलता है तभी समाज बदलता है।
1: तो ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, खेती की बातें। इसमें ग्लेडियोलस फ्लावर की देखभाल, इसके बारे में जानकारी लेंगे। वाचन अनुराधा शर्मा।
2: सभी किसान भाई बहनों का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन बात करा ग्लेडियोलस फूल का बारे में। एका बारे में अपन जानागा कि इतना सुंदर फूल का उगावना की तकनीक काई छे, नौका देखभाल किना तरीका से करनी चाहिए। ग्लेडियोलस फूल का अपना किसान भाई बहन तलवार लिली का नाम से भी जानी राज। एक बहुत खूबसूरत न बारहमासी पौधों छे। न तुरही का आकार को लंबो चमकीलो फूल रज, न इतो आकर्षक रज कि लोग न खा एका रंग जी छे वो बहुत आकर्षित करज। अपनी मजबूत उपस्थिति का साथ ग्लेडियोलस का बल्ब फूल न की क्यारी में खूब अच्छा सुंदर देखा है। न किसान भाई बहन न खा बहुत अच्छी आय भी दे देज। एका साथ साथ कटेल फूल की सजावट में भी एक आकर्षण रज, तो अव किसान भाई बहन न खा लेना एक अलग व्यवसाय भी हुई गोज। उनका लेना ग्लेडियोलस को उगाणु आसान भी छे। न एका साथ साथ हमारा किसान भाई बहन का साथ साथ अब लोग अपना घर न गमला न भी इना छोटा छोटा फूल न का गुच्छा न खा उगई राज, न उनका देखी न मंत्र मुग्ध हुई राज। ये फूल बहुत लंबा समय तक मुरझाता नहीं है। एका से एक परिवहन की समस्या भी कम रज, एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना में जी समय लगज, ओका बीच में भी ये फूल ताजा बनेल रज। तो एका लेना किसान भाई बहन का लेना एको उत्पादन जी छे अच्छो भी मिली जाए न कमाई भी अच्छी मिली जाए। इस सजावट का फूल न को उपयोग में दिनों दिन बढ़ता जाए रोज। ब्याह शादी होए, बच्चा न को जन्मदिन होए या कोई भी जेका में कि अपन नख लोग नख फूल देणु है ओका में एको उपयोग अच्छो हुई रज। एका लेना किसान भाई बहन अव एक ही खेती की तरफ आकर्षित हुई राज। ग्लेडियोलस का फूल जी जे कंद सी उगना वाला फूल छे, एको भूमिगत भंडारण करे हमारा किसान भाई बहन। न ये कंद जी छे पौधा का साल दर साल उगावना में मदद करज। एक अनुकूल परिस्थिति न धीरे धीरे इनकी संख्या का भी बढ़ाई देज। फूल खिलना का समय ओके क्षेत्र न प्रजाति का अनुसार अलग अलग हुई सकज। एका लेना अधिकांश ग्लेडियोलस का फूल बसंत सी लई न पाला पड़ना तक, मतलब जब तक ठंडी मौसम हुई जाए जब तक लगातार खिलज। न प्रत्येक फूल की डंडी पर आमतौर पर अपन देखा कि दो सप्ताह तक खिलेल रज। न जेका में कि प्रत्येक छोटी पंखुड़ी नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे खुलना शुरू हुई जाए। एका में तीन अलग अलग तरह की किस्म न का आई रही। बसंत में खिलना वालों ग्लेडियोलस, गर्मी न में फूल देना वालों ग्लेडियोलस।

एक दिन काकभुशुंडी सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष के नीचे बैठे लोमश ऋषि के पास जा पहुंचे। उनकी विनम्रता देख और दीन वचन सुनकर ऋषि ने उनके वहां आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण रूप काकभुशुंडी ने ऋषिवर से सगुण ब्रह्म की आराधना का ज्ञान देने की प्रार्थना की। मुनिवर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। कई उपमा उपमेयों द्वारा लोमश ऋषि ने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया, फिर भी निर्गुण ब्रह्म मत काकभुशुंडी के हृदय में नहीं बैठ पाया।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर था सुरेश वाडकर का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आपको सुनवा रहे हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:20 पर सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत, कार्यक्रम होगा सुनहरे पल। फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में सुबह 8:30 आज बात होगी बचपन की और सुनवाएंगे कुछ सुमधुर फिल्मी गीत। लोक संगीत में सुबह 9:00 आपको सुनवाएंगे बलराम राठौर और साथी के गाए लोकगीत। सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे पीपल्स पद्मा का 29वां एपिसोड। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:24 पर कलाकार होंगे रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में आपको सुनवाएंगे पंडित रविशंकर का सितार पर बजाया राग परमेश्वरी। संगत कलाकार तबले पर उस्ताद अल्लाह रखा। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 10:00। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन सुनिएगा सुबह 10:05 से। दिन में 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। दिन में 11:00 सुनिएगा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। फिल्म संगीत होगा दिन में 12:00 और दिन में 2:00। महिला कार्यक्रम दिन में 1:00। लोक संगीत में आप सुनेंगे लोकगीत दिन में 1:30 और दिन में 1:45 पर होगा सुगम संगीत। संग्रहालय से कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 और चित्रपट संगीत सुनिएगा दिन में 2:30 से। शाम की सभा में युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा, इसमें आज का क्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। शाम 5:45 पर फिल्म संगीत होगा। शाम 6:00 आप सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत, इसके अंतर्गत भेंटवार्ता सुनिएगा जिसमें आप सुनेंगे मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग आयुक्त कार्यालय भोपाल के सहायक संचालक अब्राहम नीरज से सुषमा व्यास की बातचीत। सुगम संगीत में शाम 6:30 कलाकार होंगे मेहंदी हसन और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे सीमा चोरे के गाए लोकगीत। खेती

0: रास्ती कार्यक्रम होगा शाम 7:20 पर। इसमें आज की बात होगी कृषक जीवन कल्याण योजना के बारे में, साथ ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता और कुछ लोकगीत। रात 8 बजे सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया होगा रात 8:15। चित्रगीत में सदाबहार फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे रात 9:15 पर। राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर। रात 10 बजे से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोह आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केन्द्रीय मंत्रिण, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलम् ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्रीरंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति, या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कौन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविध साहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः

0: तीव्रः अभवत् यदा संयुक्त राष्ट्र संघस्य सुरक्षा परिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपं ईरान देशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्त राष्ट्र संघस्य सदस्य राष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रिकेट क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान

जुटाने में मदद कर रही थीं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
4: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: GST काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
7: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी लेंगे बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। इंदौर में आज 21 देशों के मंत्री और विशेषज्ञों के साथ ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का होगा आगाज। प्रदेश भर में आज लगेगी नेशनल लोक अदालत। बिजली पानी बिल के सरचार्ज पर 100% माफी समेत कई विवादों के निपटारे का मौका। और एक तरफ आंधी बारिश तो दूसरी ओर चिलचिलाती गर्मी। प्रदेश के 13 जिलों में आज तेज तूफान का अलर्ट। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पिछले दो दिनों में 97 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी की गई है। सरकार का कहना है कि 95% डिलीवरी अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए की जा रही है।
1: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। डॉ. यादव ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया।
2: शिक्षा नीति 2020 की बात कहें तो ये मध्य प्रदेश सरकार में सबसे पहले लागू हुई और ऐसे में सांदीपनि विद्यालय ये पूरे देश में मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया कि वे दो दिन का दौरा बना करके आए, हमारे सभी स्कूली शिक्षा के सांदीपनि विद्यालय भी देखें और उच्च शिक्षा तकनीकी

0: चाहे ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के काम करे।
1: प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बिजली बिल, चलकर, संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। इस महाकुंभ में देशभर के वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और मीडिया विशेषज्ञ हिंदी पत्रकारिता के भविष्य पर मंथन कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की संयुक्त पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 के इंडेक्स स्कोर के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और धात्री माताओं को आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां देने में 95% तक कवरेज हासिल की गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस उपलब्धि का श्रेय आशा कार्यकर्ताओं, ANM और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को दिया। उज्जैन के लक्ष्मण बाग परिसर में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इसे मध्य प्रदेश भवन विकास निगम करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करेगा। इसमें प्रशासनिक ब्लॉक, 12 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, 50-सीटर कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर शीला दाहिमा और SP सुधीर अग्रवाल ने कुनो पहुंचकर हेलीपैड, चीता रिलीज साइट और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रदेश में अब तक 9,38,000 किसानों से 56,45,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी हो चुकी है। इसके लिए किसानों को 10,403 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। सरकार 2585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। भोपाल के सांदीपनी विद्यालय गोविंदपुरा में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले आराध्य पाराशर ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तरीय विजेता छात्र शामिल हुए थे। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। सलीमनाबाद के इमलिया गांव में करीब 3.35 लाख टन से ज्यादा सोने का अयस्क मिलने का अनुमान है, जो 50 साल की भूवैज्ञानिक खोज का नतीजा है। बड़ेरा और बचरबाड़ा में 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 3 बड़े डोलोमाइट ब्लॉक भी माइनिंग कॉरपोरेशन को दिए गए हैं। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। पहले दिन खतिया इको सेंटर में वन्यजीव प्रबंधन, बाघ इंसान सह अस्तित्व और आधुनिक वन प्रबंधन पर चर्चा हुई। प्रदेश पुलिस ने बीते 1 हफ्ते में अलग अलग जिलों में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 83 लाख रूपये से ज्यादा के मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए हैं। प्रदेश के बीच से गुजर रही 2 टर्फ लाइन और ऊपरी हिस्से में सक्रिय चक्रवाती हवाओं के चलते राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। कल 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच गया है। IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर लगातार 4थी जीत दर्ज की। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए, जिसके जवाब में KKR ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज शाम

7 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंदसौर में एनसीसी कैडेट्स को टीबी खत्म करने के अभियान में अपनी भूमिका के बारे में जागरूक किया गया। आगरमालवा जिले में नेशनल लोक अदालत के लिए 10 न्यायिक खंडपीठे बनाए गए हैं। झाबुआ में गर्मी के चलते पेयजल समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिला स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। सतना में नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 के खाली पार्षद पद पर उपचुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। डिंडौरी में कलेक्टर ने डैम घाट पर नाविकों की बैठक लेकर उन्हें सुरक्षा के जरूरी निर्देश दिए। धार में नगर पालिका परिसर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। गुना में मिलावटखोरी रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य पदार्थों की लगातार जांच और सैंपलिंग की जा रही है। सागर में मकान गणना का काम धीमा पड़ने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 5 जनगणना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रतलाम में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम ने अरिहंत परिसर और ऑफिसर कॉलोनी के नालों की सफाई कराई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम महल, लता मंगेशकर की आवाज है, जे नक्षप का लिखा गीत, खेमचंद प्रकाश का संगीत।

सुनहरे पल इस कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मल्हार फिल्म से, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़, गीत लिखा है इंदिवर ने, रोशन का संगीत।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की 1 बात है सही।
1: सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: सुनहरे पल कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम ब्लैक कैट, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज है। गीत लिखा है जा निसार अख्तर ने, एन दत्ता का संगीत।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: सुनहरे पल कार्यक्रम में अब सुनते हैं बरसात फिल्म का गीत। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज है, गीत लिखा है शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन का संगीत।

मैं चंचल मत

0: पतली कमर है तेरी सी नजर है, पतली कमर है तेरी सी नजर है।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म है नई रोशनी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीत के बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के, रवि का संगीत।

और अब आपको सुनवाते हैं काली टोपी लाल रुमाल। इस फिल्म का गीत आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, चित्रगुप्त का संगीत।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम अनोखी रात, मोहम्मद रफी की आवाज है, गीत लिखा है कैफी आजमी ने, रोशन का संगीत।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल, और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, मदन मोहन का संगीत है और फिल्म का नाम आपकी परछाइयाँ।

सुनहरे पल कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है माया, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज़, गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, सलील चौधरी का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही सुनहरे पल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अनुमति दीजिए पद्मश्री तपस्वी को, नमस्कार।
1: सुनहरे पल,
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बज रहे हैं। समाचार प्रभात कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
3: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
4: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
4: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
2: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता

0: टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉ राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून। ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रूपये गंवाये, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की

0: डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के फिल्म संगीत की महफिल में हम आपके साथ हैं एक ऐसे विषय के साथ जिसका अनुभव हरेक को अपने जीवन में होता है। ये एक ऐसा दौर है जिससे सबको गुजरना होता है और वो सुनहरा दौर है हमारा बचपन। श्रोताओं, बचपन ये शब्द सुनकर ही हम रोमांचित हो जाते हैं। कितना प्यारा होता है ना बचपन। जब हम सोचते हैं कि बचपन में हम क्या क्या किया करते थे तो हमें याद आती है हमारे उन मस्ती भरे दिनों की। न भविष्य की चिंता, न जिम्मेदारी का बोझ, बस हर एक दिन एक नया रोमांच। बचपन की ये यादें हमें फिर से उस मासूम दुनिया में ले जाती हैं जहां हर खुशी सच्ची और हर गम बस पल भर का।

0: मैं जब अपने बचपन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आती है मेरे एक छोटे से गांव की, जहाँ चारों तरफ हरियाली थी, खुला आसमान था, पंछियों की चहचहाहट थी जो हर वक्त कानों में संगीत घोलती थी। हमारे घर के पास एक छोटी सी नदी बहती थी जहाँ हम पानी में छपाछप करते और नाव बनाकर नदी में छोड़ते थे। हर मौसम की अपनी अलग पहचान थी। गर्मियों में आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ना, जमीन पर गिरे जामुनों को उठाकर उसे धोकर खाना, खजूर और खिरनी के क्या कहने, उनका स्वाद अब तक मेरी जुबान पर है।
1: नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली, लंबे सफर पे आओ चली, भागो चली, जागो चली, ये कैसे चले, लाओ पैसे चले, खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ लाइन में, तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो चलो लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जब पहले वो तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो,
3: नाव चली, नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली, लंबे सफर पे सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
2: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक तलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक भीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डोरी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
2: क्या हुआ?
3: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक भीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
2: मगर नानी क्या कर रही थी?
3: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
2: कितनी गहरी?
3: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15-15, दूना 30, 45, 64, 75, 96, 97, 85, 25, 25, गले में रस्सा।
0: श्रोताओं, बचपन की इन पुरानी यादों में एक याद है मेरे दादा दादी। दादाजी बहुत ही छोटी थी तब गुजर गए, लेकिन दादी हमारे कॉलेज के दिनों तक थी। बचपन में दादी की सुनाई कहानियाँ एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। कभी वे सुनाती भक्त प्रह्लाद की कहानी, तो कभी झांसी की रानी की कहानी, और कभी वो ले जाती थी हमें परियों की दुनिया में। अब तक याद आता है उनके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना। अगर हम उनकी बात न माने तो रूठ भी जाती थी वो, फिर उन्हें मनाना इतना आसान कहाँ होता था, बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे उन्हें मनाने में।

बचपन की यादें अनमोल और खट्टी मीठी होती हैं। बचपन में बड़ा ही निर्मल और पवित्र होता है हमारा मन। दोस्तों के साथ मस्ती, गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर की सैर, खेल कूद, छोटी सी बात पर खुश होने वाले वो प्यारे से दिन, मिट्टी के घर बनाना, गुड्डे गुड़ियों से खेलना, कंचे खेलना, बेफिक्र होकर बारिश के पानी में भीगना, साइकिल चलाना और छुपन छुपाई, जीवन के सबसे सुनहरे पल होते हैं ये।

बचपन का एक बहुत ही यादगार पल है मेले में घूमना। बचपन में जब हम मेलों में खेल तमाशा देखने जाया करते थे, वहाँ पानी पूरी, भेल, चाट पकौड़ी और सॉफ्टी खाना हमारे पसंदीदा व्यंजन होते थे। खाया पिया, सैर सपाटा किया, झूले भी झूल लिए, अब क्या किया जाए। तो अब देखते हैं बायोस्कोप, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे कुतुब मीनार, ताजमहल और गेटवे ऑफ इंडिया।

श्रोताओ, जब हम बचपन की बातें कर ही रहे हैं तो बचपन में मनाए हुए जन्मदिनों को कैसे भूल जाएं? बचपन वाला जन्मदिन बड़ा ही खास होता था। वो दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता था। जन्मदिन के ठीक एक महीने पहले से हम अपने जन्मदिन की तारीख गिनना शुरू कर देते थे। बर्थडे पार्टी कैसे मनाएं? इसके आइडियाज सोचने लगते थे। किस किस को बुलाएंगे, लिस्ट बनाना शुरू कर देते थे। काफ़ी पहले से ही लड्डू बनेगा या बर्फी, हलवा बनेगा या गुलाब जामुन, सोचकर बता देते थे मम्मी पापा को। केक का प्रचलन नहीं था उस दौर में, सिर्फ और रिटर्न गिफ्ट भी नहीं, बस ढेर सारे बच्चे और उनके साथ उनके माता पिता तो आ ही जाया करते थे। अड़ोसी पड़ोसी तो होते ही थे, लेकिन अब तो चलन कुछ और ही हो चला है। बर्थडे का होटलों में होने लगे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन, दिखावों की होड़ में बर्थडे मनाने की थीम होने लगी है, ड्रेस कोड भी होने लगे हैं, डीजे डांस के तो क्या कहने, और महंगे रिटर्न गिफ्ट्स। बचपन गुम सा हो गया है इस दौर में, लेकिन उसी पुराने दौर को याद करते हैं जहां प्यार था, विश्वास था, अपनापन था। आज मैं भी अपना बचपन इस गीत के माध्यम से देख रही हूं, जिसमें है माँ का दुलार और प्यार।

जीवन का एक सुनहरा दौर है बचपन, जिसकी यादें हमें उम्र भर सहेजना चाहते हैं। ये वही यादें हैं जो उम्र भर हमें खुशी देती हैं, लेकिन आजकल बचपन खो सा गया है। आज बच्चों के मुख पर मुस्कुराहट की बजाय उदासी है, तनाव है। दादा दादी नाना नानी के कंधों पर सवारी करने वाले बच्चों के कंधों पर आज भारी भरकम बसता है। नौकरी पेशा माँ बाप अपने बच्चों को दिन भर व्यस्त रखने के चक्कर में उन्हें स्कूल, ट्यूशन, डांस क्लास, हॉबी क्लास में जबरन डालकर स्वयं को उचित समझ रहे हैं। आज बच्चों को ये पता ही नहीं बाहर की हवा, दोस्तों की मस्ती क्या होती है। माता पिता को ये समझना चाहिए बीता कल वापस नहीं आता, उसी तरह बच्चों का बचपन दोबारा लौटकर नहीं आएगा। कम से कम इस उम्र में तो उन्हें खुला आकाश दें और जीवन का लुत्फ उठाने दें। श्रोताओं, बचपन केवल एक जीवन का सुनहरा दौर नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन की नींव होती है, जिस पर आने वाला पूरा जीवन टिका होता है। जो चीज़ें हमें बचपन में खेल खेल में सीख ली, बड़े होकर वो हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए जब भी हम याद करते हैं हमारा बचपन, तो हमारे चेहरे पर होती है सुकून भरी मुस्कान और दिल यही कहता है, काश बचपन के वे दिन फिर से लौट आएं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं लोक संगीत। कलाकार हैं बलराम राठौर और साथी। इनसे आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोकगीत।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
4: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
5: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं बलराम राठौर और साथी, इनसे आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोकगीत।
6: हर हो माता।

आप सुन रहे थे लोक संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पीपल्स पद्मा का 29वां एपिसोड, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं इसरार अंसारी का कलाम। आवाज़ है रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की।

सुगम संगीत में आप सुन रहे थे इसरार अंसारी का कलाम, आवाज थी रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आपको सुनवा रहे हैं पंडित रविशंकर का सितार पर बजाया राग परमेश्वरी। तबले पर आपके साथ हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां।

शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे पंडित रविशंकर का सितार पर बजाया राग परमेश्वरी। तबले पर आपके साथ थे उस्ताद अल्लाह रखा खां।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। सिंगरौली में अब बच्चे सिर्फ किताबों में ही आसमान नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। कलेक्टर गौरव बैनल की पहल पर उत्कृष्ट विद्यालय बैढ़न में 10 इंच का प्रोफेशनल टेलीस्कोप लगाया गया है। इस दूरबीन के जरिए छात्र अब चांद के गड्ढों, शनि ग्रह के छल्लों और गहरे आकाशीय पिंडों को करीब से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने किया। वहीं विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी सिंगरौली लगातार आगे बढ़ रहा है। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के निर्देशन में खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तय लक्ष्य के मुकाबले बड़ी राजस्व वसूली की है। जिले ने करीब 4,833 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सामने 4,681 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। खनिज संपदा के साथ साथ वन संपदा को लेकर भी जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। वन मंडल जिला यूनियन सिंगरौली ने वर्ष 2026 के तेंदूपत्ता संग्रहण की सभी तैयारियां पूरी करनी हैं। इस साल जिले के लिए 1,77,000 से ज्यादा मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 400 रुपए प्रति सैकड़ा निर्धारित की गई है जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा। इधर जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सिंगरौली को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। वर्ष 2020 के आईपीएस अधिकारी शियाज के एम ने जिले के एसपी का पद संभाल लिया है। इससे पहले वे बालाघाट के हॉक फोर्स में पदस्थ थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर समन्वय पर जोर दिया। नई पुलिस टीम के सक्रिय होते ही अपराधियों पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। बरगवां थाना पुलिस ने हाल ही में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने एक युवक के साथ मारपीट, नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पर्स लूट लिया था। वहीं प्रशासन अवैध खनन और भंडारण पर भी लगातार सख्ती बरत रहा है। खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम मझौना में कार्रवाई करते हुए निजी जमीन पर अवैध रूप से भंडारित करीब 174 घन मीटर लावारिस रेत जब्त की है। इधर सिंगरौली को रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। अब सिंगरौली सीधे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से रेल सेवा के जरिए जुड़ गया है। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने सिंगरौली रेलवे स्टेशन से साप्ताहिक धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औद्योगिक क्षेत्र में भी गतिविधियां लगातार जारी हैं। एनटीपीसी विंध्याचल ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। परियोजना और टाउनशिप के करीब 20 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान श्रमिक अधिकारों, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुए। अलग अलग स्थानों पर सेफ्टी टॉक और वेलनेस कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इसी क्रम में एनटीपीसी विंध्याचल में फायर सर्विस वीक भी मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक बॉम्बे डॉकयार्ड अग्निकांड में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को याद करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ी पहल की गई है। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने वृहद वृक्षारोपण के लिए एमपीआरवीवीएन के साथ एमओयू किया है। एनसीएल ने वर्ष 2026-27 में प्रदेश के खदान क्षेत्रों की 208 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर करीब 4,70,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब बात जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने की। जिले में खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी है। ये शिविर 4 जून 2026 तक चलेंगे। जिले के अलग अलग विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल, कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैढ़न के राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में फुटबॉल और क्रिकेट शिविर लगाए गए हैं जबकि खो खो का प्रशिक्षण काइट राइज पब्लिक स्कूल और बास्केटबॉल का प्रशिक्षण कन्या महाविद्यालय बैढ़न में दिया जा रहा है। अंत में बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया है। 71 वर्षीय लालमन को आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत आयुष्मान कार्ड मिला है जिससे उन्हें अब हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं छोटे व्यापारी शिव नारायण को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण मिला है जिससे वे अपना काम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह रीता कुशवाहा ने भी पीएम स्वनिधि की मदद से अपनी बंद दुकान को फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला किसान सत्य कुमारी जायसवाल के नेतृत्व में महिलाएं मिलेट उत्पादन और मार्केटिंग से आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। अब प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर आपको एक बार बता देते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो हमें फ़ोन करिए और अपने पसंद के गीत सुनिए। चलिए जुड़ते हैं पहले कॉलर से। हेलो हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: बस अनिल भंडारे वाला, सुजामन नगर से।
0: भंडारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज हम दिल देके देखो का गाना सुनना चाहेंगे।
0: दिल देके देखो, कौन सा गीत?
1: आशा वो तो मामा उसका यार चुलबुला है।
0: यार चुलबुला है आज इस
1: में कुछ बताना चाहूंगा आपको।
0: हाँ हाँ जी बताएं। वही हम पूछना चाह रहे थे कि आज ये गाना क्यों सुनना है आपको।
1: दिल देखो देखो मैं प्रथम महिला संगीतकार से ईशा कन्ना
0: जी
1: और आशा परिक के दोनों की पहली फिल्म थी, सुपरहिट फिल्म थी।
0: सुपरहिट फिल्म, हाँ।
1: और साथ में शम्मी कपूर भी थे जिन्होंने पिक्चर को चार चांद लगा लिया था।
0: ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी शायद ये ना।
1: हाँ, और ये गाना उस समय इतना सुपरहिट हुआ था कि हर थिएटर में 25 हफ्ते के ऊपर चली थी पिक्चर। उसका संगीत इतना सुमधुर हुआ है कि आज भी हम सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी।
1: इस संगीत में एक खास बात यह है कि इसके तालियों के गुड़गुड़ा से पूरा माहौल गुंज उठता था।
0: तालियां बजती हैं।
1: हाँ तालियां, और जो भी दर्शक देखता था चेयर पे बैठ कर उछल कूद करके डांस करता था, ये दृश्य हमने देखा है।
0: आपने तो इतनी अच्छी जानकारी दी। अब श्रोता जब ये गाना सुनेंगे तो उस कल्पना में चले जाएंगे, उस फिल्म में शामिल हो जाएंगे
1: और हम भी पुरानी यादों में खो जाएंगे।
0: बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी। और सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, लीजिए सुनिए। धन्यवाद।

0: चलिए जुड़ते हैं दूसरे श्रोता से। हेलो हेलो एम एच हॉटलाइन। नमस्कार नमस्कार
1: सर, गुप्ता नगर नंबर 71 इंदौर से अनिल कौचाले बात कर रही
0: हूँ। कौचाले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: और आज का बैंक दूसरा शनिवार है, इसलिए फोन लगाने का टाइम मिल गया।
0: हाँ हाँ हाँ, वही हम पूछना चाह रहे थे कि आज आप बैंक से फोन कर रहे हैं या घर से।
1: नहीं, बैंक की छुट्टी है ना
0: आज। छुट्टी है जी जी जी जी।
1: अभी घर पर ही है।
0: अच्छा अच्छा, कौन सा गीत सुनेंगे आज बताएं।
1: और आपको पता है हम ये इंदौर परस्पर बैंक में नौकरी करते
0: हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।
1: अपने हेड ऑफिस में हाई कोर्ट के पीछे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आज कौन सा गीत सुनेंगे।
1: आज हमको यही है जिंदगी फिल्म का की सुरमा दीजिए, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, दिल रूपा आ मेरी बाहों में।
0: अच्छा, ये गीत किसने लिखा है।
1: गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है। उलिए गया संजीव कुमार की फिल्म है, आपको याद होगा एक लॉटरी के टिकट पे इसकी पूरी फिल्म बनी थी।
0: ओहो हो, यानी जीवन की सत्यता और जीवन की कहानी थी इसमें कि किस तरह से
1: गरीब रहता है, उसमें खाने को भी नहीं रहता है, लेकिन एक जब हम उसको लॉटरी का टिकट खुल जाता है तो वो किस तरह से अमीर हो जाता है और उसके सपने कैसे होते हैं, इस विषय पर पूरी फिल्म है ये।
0: ओहो हो, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। और आज छुट्टी के दिन आप एंजॉय करेंगे इस गीत के साथ।
1: जी जी, है ना? बिल्कुल।
0: आप पूरे परिवार के साथ सुनते कार्यक्रम।
1: हाँ हाँ
0: हाँ, कौन कौन है आपके परिवार में।
1: हमारा बेटा MBA कर रहा है, वो अभी परीक्षा देने उसकी एग्जाम चल रही है, फोर्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर के।
0: अच्छा,
1: देवी आई लव हियर से MBA कर रहा है वो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: और मिसेस द हाउसवाइफ है
0: जी, वो भी रेडियो सुनती हैं।
1: हाँ बिल्कुल सुनते हैं ना, उनको बचपन में शौक थे।
0: अच्छा नहीं,
1: राजस्थान के है तो कोटा में वगैरह उनके रेलवे कॉलोनी में रहते थे, तो आसपास के लोग भी कार्यक्रम सुनने आते थे। पुराने जमाने में जब अमीर सैनी जी का बीना का गीत पर आता था, तो उस जमाने में लोगों के पास रेडियो नहीं होता था, तो वो दूसरों के घर में जाके सुनते थे।
0: जिस तरह टीवी जब शुरू हुआ तब टीवी भी सभी के यहाँ नहीं होता था और हम आसपास के घरों में ही जाकर टीवी देखते थे, उसी तरह रेडियो का जमाना था कि रेडियो भी नहीं होता था सभी के पास। चलिए, आज पुरानी यादें ताजा हो गई।
1: जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद सर। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ, मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार श्रीनिवास जी, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: अरे
0: आप बढ़िया हैं। और आज
1: हो,
0: कौन सा गीत सुनेंगे बताएं?
1: सौ दिन सास के का।
0: 100 दिन सास के। ओहो,
1: हाँ
0: बड़ी खूबसूरत फिल्म आपने सिलेक्ट की है। और ये गाना तो
1: हाँ
0: मैंने कई सालों से नहीं बजाया होगा, इस फिल्म का गाना, और आज आपने पसंद किया है तो आपके साथ सभी श्रोता भी काफी सालों बाद सुनेंगे गाना इस फिल्म का। कौन कौन सा गीत सुनेंगे इस फिल्म का?
1: साथी मेरे रूम दो मने।
0: साथी मेरे तुम। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुनवाएंगे आपको गाना, बिल्कुल सुनवाएंगे। और सब अच्छा चल रहा है? अभी गर्मी काफी है? गर्मी काफी है। जी
1: तो उनको मेरे बारे में बता देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नए लोग।
1: वो मेरा बहुत कहा देते वो
0: हाँ,
1: अगर वो कौन राधे देन राधे देन
0: जी,
1: वो उनको मेरे बारे में बता देना।
0: बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे
1: हाँ
0: जी।
1: ठीक
0: ठीक है, सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। फिल्म का नाम
1: है। धन्यवाद।
0: 100 दिन सास के।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
3: जुड़ते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो हेलो
4: हेलो
3: एमएच हॉटलाइन।
4: हाँ दीदी नमस्ते।
3: नमस्कार कौन बोल रहे हैं?
4: आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी राजेंद्र नगर गंज बासोदा जिला विदिशा।
3: बिल्कुल बिल्कुल पहचान गए हम आपको। और आज कौन सा गीत पसंद किया है आज आपने?
4: आज गीत सुनना है फिल्म का नाम है जीत।
3: ये वो सनी देओल करिश्मा कपूर वाली फिल्म है।
4: हाँ दीदी ये फिल्म बहुत अच्छी है गीत भी अच्छा है हम देख रहे थे कल भी देखी थी हमने।
3: अच्छा
4: हाँ बहुत अच्छा गीत है और फिल्म भी अच्छी है।
3: आप पुराने गीत पसंद करते
4: या नहीं? पुराने नहीं हम
3: मीडियम नब्बे के दशक वाले।
4: हाँ बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
3: अच्छा
4: और दीदी कैसी हैं आप?
3: बस बढ़िया है हम। आप बताएं आप कैसे हैं?
4: बहुत बढ़िया है दीदी पानी पूरी सेंटर का ठेला लगाते हैं वही काम चल रहा था हमने चलो दीदी से बात।
3: अच्छा सुबह से ही शुरू हो जाता है आपका ठेला?
4: हाँ नहीं शुरू से नहीं अभी काहे काम चल रहा है पानी बनाने की तैयारी चल रही है।
3: अच्छा हाँ क्योंकि ज्यादातर शाम को 4 बजे के बाद ही शुरू होता है पानी पूरी खाने का सफर।
4: हाँ हो तो जाता है लेकिन हम क्या है अभी 12:30 बजे निकलते हैं।
3: अच्छा
4: हाँ दुकान है अपनी वहाँ पर लगा लेते हैं दुकान खरीद दी अपन ने।
3: किस कितने कितने तरह के पानी बनाते हैं आप कितने तरह के पानी बनाते हैं?
4: पानी दीदी हम एक ही तरीके का बनाते हैं कोई परिवर्तन नहीं करते।
3: अच्छा
4: नहीं नहीं कोई डिफरेंस नहीं।
3: हाँ आजकल शहरों में तो 7-8-10 हाँ, पता नहीं कितने तरीके के पानी बनते हैं।
4: नहीं नहीं वो पानी क्या है
3: केमिकल
4: समझ नहीं पाते पीने वाले वो केमिकल वाला पानी बनता है। हाँ वो
3: बस स्वाद होता है उसमें स्वाद आता है बस
4: व्यक्ति नहीं स्वाद तो आएगा क्योंकि उसमें वो चीज डली ना स्वाद तो आएगा टेस्ट आएगा।
3: जी जी जी
4: है कि नहीं हम तो इस प्रकार का बनाते हैं अमचूर का इमली का पानी बनाते हैं फर्स्ट क्लास
3: ओरिजिनल प्राकृतिक और आयुर्वेदिक
4: बिल्कुल बिल्कुल ना नुकसान करे ना ग्राहकों के लिए।
3: धनिया पुदीना इमली
4: हाँ बिल्कुल पुदीना तो डालना ही पड़ता है बिल्कुल हरा पुदीना
3: काला नमक
4: हाँ बिल्कुल और सौंठ है काली मिर्ची है इलायची है लौंग है।
3: तो ये मसाले घर पे ही तैयार करते होंगे ना आप घर पे ही कूट कर मसाले?
4: हाँ ये तो हम घर पे ही बनाते रहते हैं दीदी।
3: जी जी जी चलिए
4: और दीदी
3: आज
4: तो आपके तो हम नियमित श्रोता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल नियमित श्रोता हैं आप।
4: हाँ लेकिन थोड़े से पत्र शामिल नहीं हो रहे हैं।
3: पत्र अभी नहीं शामिल करते हैं हम पत्र आपके ऐसी बात नहीं है।
4: हाँ हम डालते रहते हैं हम सभी आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े हैं। हाँ,
3: जी जी जी जी
4: बिल्कुल सभी हम रिले कर रहे हैं पूरी आकाशवाणी केंद्र ज्ञान का खजाना है आकाशवाणी केंद्र।
3: बिल्कुल ज्ञान का खजाना
4: बिल्कुल समझिए दीदी तो बिल्कुल ज्ञान का खजाना है दीदी हम तो कम से कम 25 साल हो गए हमारे लिए। और दीदी हम तो इंदौर भी आते रहते हैं लेकिन मालवाहक नहीं आ पाए थोड़ा सा टाइम नहीं मिला हमें।
3: जी जी जी जरूर आए आप
4: स्टूडियो में आते हैं आप
3: बिल्कुल बिल्कुल जरूर आए स्वागत है आपका। और
4: बिल्कुल दीदी और पानीपुरी सेंटर के ठेले पे आइए गंज बासोदा आपका स्वागत करते
3: बिल्कुल बिल्कुल आएंगे कभी भी जब भी हम गंज बस
4: इंदौर में अभी
3: इंदौर में तो गर्मी है।
4: हाँ यहाँ भी 32-34 डिग्री चल रहा है गंज बासोदे में भी।
3: नहीं नहीं नहीं काफी गर्मी है।
4: हाँ दीदी हम एक बात कहना चाहते हैं श्रोताओं से
3: जी
4: जो छोटे बच्चे रहते हैं जो टच मोबाइल चलाते हैं इनके लिए जी लग से बिल्कुल छुटकारा पाए इनकी देख रेख करें
3: बिल्कुल
4: जरूरी है सेहत पे असर पड़ता है आंखें भी खराब होती हैं आदमी व्यक्ति कोई समझ नहीं पाता इसके लिए।
3: हाँ ये तो सही बात है इसमें माता पिता ही जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए।
4: हाँ
3: माता पिता को नहीं देना चाहिए।
4: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देना चाहिए पढ़ने वाले बच्चों को तो मोबाइल की लत बिल्कुल ना लगाए। बिल्कुल क्या हुए? हम तो यही देख रहे हैं ना मोबाइलों के जरिए देखो कितने भाई फ्रॉड हो रहे हैं दुनिया भर के।
3: नहीं सही सही कहा आपने बिल्कुल बिल्कुल आपके आपकी ये राय मेरे ख्याल से सभी श्रोता सुन रहे होंगे और
4: हाँ
3: बिल्कुल जागेंगे।
4: जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, धूप से बचे रहें थोड़े बहुत
3: जी,
4: है वो खान पान में जो हल्का मतलब हल्का खाना है वो खाएं
3: जी,
4: और ज्यादातर प्याज का सेवन करें।
3: बिल्कुल सही कहा।
4: हाँ और दीदी और 3 लीटर पानी पर्याप्त होना चाहिए दिन भर में हर व्यक्ति के लिए।
3: बिल्कुल
4: चलिए, सेहत खराब नहीं होगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आपकी ये बात का। और अब सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत, फिल्म का नाम जीत।
4: बिल्कुल
3: धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: MH हॉटलाइन कार्यक्रम में जुड़ते हैं अगले श्रोता से। हेलो हेलो
4: हेलो
3: MH हॉटलाइन, नमस्ते। कहाँ से बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: बाग
3: बाग से बात कर रहे हैं। अच्छा, गीत कौन सा सुनेंगे?
4: क्रांति का सुना दो।
3: क्रांति का गाना तो बहुत बजता है।
4: हाँ, ये समर्पित है इसलिए बंगालवासी।
3: आपको तो सुहागरात फिल्म का गीत सुनना था ना?
4: हाँ जी मैम, वो सुना।
3: अच्छा,
4: हाँ,
3: गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक। चलो सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए।
4: ये भी, हाँ
3: जी सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, एम एच हॉटलाइन
1: जी मैम, नमस्ते जी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा से जी।
0: अग्रवाल जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैम।
0: जी, आज मौसम कैसा है?
1: आज तो ठीक है मौसम, अब बदली नहीं है ना, धूप वो आंधी चली, खुला है अब।
0: खुला है आसमान, मतलब
1: हाँ
0: धूप है और
1: तेज
0: गर्मी
1: धूप
0: भी
1: है जी
0: होगी। धूप है तो गर्मी होगी।
1: जी निश्चित होगी।
0: अच्छा, पिछले
1: हाँ
0: पिछले कुछ दिनों बारिश वगैरह हो रही थी क्या वहाँ?
1: छटपट बारिश हो रही थी,
0: अच्छा अच्छा
1: ऐसी
0: अच्छा
1: बूंदा बांदी।
0: हाँ, ये महोबा किस एरिया में है? एमपी में ही है ना, मध्य प्रदेश में कि
1: नहीं
0: उत्तर
1: यूपी में है
0: प्रदेश?
1: मैम
0: यूपी
1: जी,
0: में है।
1: प्रतापगढ़
0: और आप क्या,
1: जिला से लगा हुआ है हमारा जिला महोबा।
0: कौन से जिले से?
1: महोबा
0: नहीं, महोबा किस एरिया, मतलब कौन से?
1: छतरपुर जिला से लगा हुआ है
0: छतरपुर जिले से लगा है? अच्छा, छतरपुर
1: जी,
0: जिले से लगा है।
1: यहाँ से मेरे गांव से 4 किलोमीटर बाद एमपी लग जाता है।
0: और वो ये महोबा में सुनते हैं आदिवासी एरिया है शायद ना?
1: नहीं आदिवासी एरिया नहीं है,
0: नहीं
1: नहीं।
0: है। क्या क्या फेमस
1: बुंदेलखंड
0: चीज़ है वहाँ की?
1: है जी महोबा।
0: फलों फलों
1: यहाँ
0: में फलों में क्या फेमस है वहाँ?
1: फलों में पान है मेरे यहाँ के महोबा के। हाँ
0: अच्छा, पान पान की खेती भी होती होगी फिर वहाँ?
1: जी, पान के बरेजे लगे हैं।
0: अच्छा,
1: और मेरे श्रीनगर में मूर्तिकला है जी,
0: मूर्तिकला।
1: अष्ट धातु की मूर्ति बनती है, इसलिए फेमस है, पूरे देश में जाती है यहाँ से।
0: अच्छा, ये नई बात
1: यहाँ
0: पता चली।
1: एक किला भी है, पहले यहाँ टकसाल था, रो सिक्का ढलते थे, हमारे गांव का श्रीनगरी सिक्का चलता है, वो बहुत महंगा बिकता
0: हाँ
1: है जी।
0: जी, यानी पहाड़ों में खनिज पदार्थ होंगे वहाँ, तभी तो मूर्ति और मेटल मेटल से ही बनती है ना, अष्ट धातु, मतलब धातुओं से मूर्तियाँ बनती हैं। तो
1: हाँ
0: उस एरिया
1: पीतल
0: में
1: की
0: धातुओं का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मतलब धातुएं होंगी ज़मीन में। चलिए, एक नई जानकारी मिली आज आपसे बात हुई तो। और सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। कौन सा गीत सुनेंगे आपने बोला था?
1: जी। छुपा रुस्तम
0: छुपा
1: नाम का,
0: रुस्तम का कौन सा गीत?
1: ये चांद कोई दीवाना है।
0: ये चांद कोई दीवाना है। चलिए, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो, MH हॉटलाइन।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम
0: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। मैं शिवपाल गोयल दिल्ली से मैम। हाँ
0: दिल्ली से बोल रहे हैं आप। आज कौन सा
1: जी
0: गीत सुनेंगे?
1: मैम, तेरी किस्मत से है फिर तेरी दीवानगी में खो गया है।
0: जी, आज छुट्टी है आपकी?
1: नहीं मैम, अभी काम पे ड्यूटी पे ही हैं
0: ड्यूटी
1: तो
0: पे
1: आपको
0: ही
1: सुन रहे
0: हैं।
1: थे।
0: अच्छा, ये ड्यूटी संडे के अलावा आपको और कौन सी छुट्टी मिलती है? मिलती है क्या कोई छुट्टी और?
1: नहीं मैम, सिर्फ संडे को ही मिलती है
0: सिर्फ संडे को, बाकी जो
1: जी।
0: छुट्टियाँ होती हैं वो मिलती होंगी? गवर्नमेंट
1: हाँ मैम, यस मैम, मैं बाकी जो मतलब गवर्नमेंट छुट्टियाँ होती हैं वो मिलती हैं
0: छुट्टियाँ मिलती हैं।
1: जी।
0: और आज आज क्या खाना खाकर आए हैं आप?
1: क्या यही मैम, जब नाश्ते में सिंपल खाना होता है अपना।
0: सिंपल खाना, टिफिन भी लाते हैं साथ में?
1: हाँ जी, वो तो लंच के लिए लाना पड़ता है
0: जी, तो टिफिन में क्या है आज आपके?
1: मैम। सब्जी रोटी है बस, कुछ खास नहीं है।
0: अच्छा, नहीं, किस चीज़ की सब्जी?
1: तो जी मैं वो बैंगन का भरता बनाया था। हाँ
0: बैंगन का भरता।
1: जी
0: आपको पसंद है बैंगन?
1: यस मैम, बनता है कभी कभी, हफ्ते में एक बार, तो अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है। हाँ, ज़्यादातर लोगों को आलू की सब्जी और या आलू से बने हुए पदार्थ मतलब आइटम अच्छे लगते हैं ज़्यादातर।
1: जी, बिल्कुल।
0: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात हुई, है ना? सुनवाते हैं आपकी
1: हाँ
0: पसंद का
1: जी,
0: गीत, सुनिए।
1: धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी थैंक
0: क्या
1: यू सो मच।
0: करते
1: कैसे
0: हैं
1: हैं
0: आप?
1: आप?
0: आप क्या करते हैं?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: अच्छा, इस समय खेतों
1: जी
0: में कुछ है या अभी तो सब कटाई हो गई शायद?
1: हाँ, अभी गेहूँ लहसुन लगाई थी हमने, तो कटाई हो गई इसकी, 1.5 महीने हो गए। अभी तो बस खेत खाली कर दिया है।
0: अभी घर पर ही हैं आप?
1: हाँ बस घर पे हुए, और अभी कार्यक्रम सुनते रहते हैं, फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं।
0: अच्छा,
1: जी और
0: और
1: इंद्रो
0: कौन
1: के जो
0: से
1: कार्यक्रम आते हैं ना,
0: और भी सुनते हैं?
1: यू जी हाँ युवाणी कार्यक्रम सुनता हूँ, मन भवन सुनता हूँ, महिला के लिए जो कार्यक्रम आता है वो भी सुनते हैं।
0: अच्छा,
1: जी हाँ, और मतलब आपको बताऊँ, मोबाइल ऐप
0: जी, बोले।
1: जी मोबाइल ऐप से स्पष्ट प्रसारण मिलता है ना, और हमें आपको बताऊं, जब से मोबाइल ऐप से कार्यक्रम आने लगे हैं ना, तो हमें हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: वही मैं पूछना चाह रही थी कि आप और स्टेशन भी ट्यून करके सुनते होंगे।
1: जी बिल्कुल, काफी स्टेशन, मतलब आपको बताऊं, 30-35 स्टेशन से जुड़ता हूँ मैं मोबाइल के जरिए, और मैंने एक रजिस्टर बना रखा है, उसमें जब भी मेरा कहीं पर भी कॉल लगता है ना,
0: जी
1: तो उसको मतलब एक नोट करके रखता हूँ मैं। तो अभी मेरे 450 कॉल हो चुके हैं 2026 में।
0: ओ, क्या बात है,
1: जी हाँ
0: रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं
1: जी
0: आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: नहीं तो ये इतने 450 कॉल लगे हैं तो आपके गाने भी इतने हैं या आपने रिपीट गाने सुने हैं?
1: नहीं, गाने तो रिपीट होते हैं, क्योंकि
0: होते
1: बार बार एक ही
0: हैं
1: गाना, हाँ जी, कई स्टेशन पे बजता है,
0: जी
1: और क्योंकि हर जगह अलग श्रोता होते हैं ना सुनने वाले, तो
0: जी जी जी
1: गाना भी अलग अलग तो होता है, लेकिन कई बार गाने रिपीट भी हो जाते हैं।
0: रिपीट भी हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि
1: जी हाँ
0: पसंद के गाने सुनना होते हैं हमको और वो पसंद
1: जी हाँ
0: कम ही होती है, मतलब सिलेक्टेड गाने ही पसंद आते हैं हमको।
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल, अभी
0: जी
1: 450 गाने कोई एक आदमी तो पसंद नहीं कर सकता है ना,
0: सही है।
1: है ना। वैसे मुझे
0: चलिए,
1: आपसे
0: आप
1: बात करके बहुत ही अच्छा
0: नहीं,
1: लगा,
0: आपसे बात
1: कार्यक्रम
0: करके
1: सुन रहा
0: हमें
1: हूँ।
0: भी बहुत सारी जानकारी मिली कि आपने
1: जी
0: इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और श्रोताओं के को भी ये मतलब सुन के वो लोग भी इस तरह से डायरी मेंटेन कर सकते हैं, है
1: जी बिल्कुल
0: ना?
1: जी
0: धन्यवाद।
1: जी
0: सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: जी
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: कोशिश कर रहे हैं तब तभी से।
1: दीदी हम कहीं भी स्टेशन पे नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे पसंद का प्रोग्राम इंदौर ही लेकर आ रही है।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी इंदौर को सुनते हो। और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं इसके अलावा?
1: दीदी युवाणी में भी कॉल लगाते रहते हैं लेकिन लगता नहीं है, बहुत मुश्किल हो गए। अब
0: बहुत
1: क्या है कि तुम
0: मुश्किल।
1: और यार पर श्रोताओं में पड़ गए ना।
0: हाँ, श्रोता तो काफी बढ़ गए हैं और ये ऐप आ जाने से क्या है, मध्य प्रदेश के बाहर के भी श्रोता जुड़ते हैं हमसे।
1: दीदी इस ऐप के माध्यम से मैं आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ यहाँ
0: जी
1: पे,
0: जी
1: जो
0: जी
1: बहुत ऐसा होता है कि रेडियो को लाना पड़ता था पहले यहाँ पे।
0: सही है। और उसमें मतलब नेटवर्क भी मिलता नहीं था कई बार, मतलब ठीक से सुनाई भी नहीं देता था, लेकिन ऐप तो बहुत अच्छा सुनाई देता है उस पे।
1: वो ऐसा होता था कभी कभी कि जैसे कि आपके स्टेशन सुनाई दे रहे थे छतरपुर साफ नहीं चलते थे, लेकिन इसमें हर स्टेशन साफ चल रही है।
0: जी सही कहा।
1: दीदी गीत सुनने जाता हूँ,
0: बिल्कुल। कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: गदर पिक्चर का सुनवा दो ना, मैं निकला गडले से मोड़ आया कि मुझे दिल छोड़ा है।
0: गदर फिल्म का मैं निकला
1: हाँ
0: घड़ी लेके, जरूर जरूर सुनवाएंगे आपको ये गीत। और अभी आप कहाँ पर हैं? खेत पर ही हैं, है ना?
1: दीदी आप खेत से घर जा रहे थे, वो क्या है कि दीदी गर्मी काफी तेज हो गई थी तो हमने सोचा सिंचाई बंद कर दे और घर चले हो।
0: जी, गर्मी अभी बहुत तेज है ना? बाहर धूप निकल रही होगी।
1: इंदौर में कैसी दीदी गर्मी?
0: इंदौर में तो धूप है।
1: हाँ दीदी यहाँ पे भी कड़ी धूप आ गई है दिल्ली में, मतलब
0: दो दिन से वापस कड़ी
1: सिंचाई
0: धूप का असर है और
1: बंद
0: तापमान भी 40 को पार है, 40 पार है।
1: कर। मौसम तो होता ही रहता है, कभी बादल कभी गर्मी।
0: हाँ, तेज गर्मी पड़ती है तो उससे बादल आ जाते हैं और फिर बारिश हो जाती है तो ठंडा हो जाता है।
1: सुनने वाले सब यही कहेंगे इस मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात हुई। सुनवाते आपकी पसंद का गीत, फिल्म का नाम गदर।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: पद्मिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और जल्दी से बता
1: क्या दिया
0: दें,
1: आपने?
0: गीत कौन सा सुनेंगे, जल्दी से बता दें।
1: मुझे आंसू समझ के क्यों मुझे हाथ से तुमने गिरा दिया? ये छाया फिल्म का गीत सुनना है क्योंकि
0: छाया फिल्म का
1: आज
0: गीत।
1: आपकी
0: हाँ हाँ जी
1: पुण्यतिथि है आज।
0: जी जी जी जी आपसे बात
1: बहुत
0: होती है और हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलती है, और स्पेशली जन्मदिन हो किसी का या पुण्यतिथि हो तो वो जरूर पता लगता है हमको।
1: और पद्मश्री जी बहुत कम समय है, बहुत बोलना था, पर मैं इतना जरूर कहूंगा आज के फिल्म संगीत में आपने मुझे अपने बचपन में लौटा दिया वापस।
0: जी
1: बड़ा मजा आया।
0: जी आपने सुना प्रोग्राम।

0: मैं बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम
1: पूरा सुना।
0: मेहनत से बनाते हैं वो प्रोग्राम, अपने विचारों को उसमें डालते हैं और समाज में जो चल रहा है उसको भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो
1: लेकिन एक बात है पद्मश्री जी,
0: जी
1: शायद मैं बिल्कुल शायद मैं जाऊंगा,
0: जी
1: मुझे नानी के घर जाने का सुख नहीं मिला, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरी हम लोग गांव में रहते थे
0: जी
1: और मेरी मम्मी की शादी गांव में ही हुई थी
0: जी जी जी जी
1: तो कई बार
0: अच्छा
1: नहीं, मुझे मुझे मुझे याद है थोड़ा सा बचपन में
0: हाँ
1: मैं मम्मी से कई बार अक्सर पूछ लेता था कि मम्मी आपने गांव में शादी क्यों की, तो वो बोलती थी बाबूजी से पूछ।
0: जी जी जी चलिए सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, फिल्म का नाम छाया।

0: तो ये था आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम। कार्यक्रम में इस कार्यक्रम से अब अनुमति दे पद्मश्री को। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: भोर की अंगड़ाई से सांझ की दियाबाती तक या फिर सुबह की पहली किरण के बुलावे पर आसमान पर जागते दिन की अनछुई लाली हो, कुछ इस तरह आकाशवाणी के श्रोताओं के दिलों पर राज करती आई है हमारी आकाशवाणी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपने 90 सालों के गौरवशाली वर्षों को, हाँ जी नमस्कार,
1: नमस्कार साहब, हेलो सर,
0: हाँ जी नमस्कार,
1: नमस्कार, आज का क्या विषय है?
0: आज का हमारा विषय है आकाशवाणी, जो कि अपने गौरवशाली 90 वर्षों को बहुत ही खूबसूरती के साथ में आपके सहयोग से, आपके साथ के साथ मनाती आई है। और आज आकाशवाणी के लगभग पूरे देश के तमाम केंद्रों पर वॉकेथॉन या कि मैराथन का आयोजन किया गया है, इस विषय पर आपके क्या विचार हो सकते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: हमारे विचार ये है सर कि ये आकाशवाणी है ना, हर इंसान को शांति पहुंचाती है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इससे क्या है, कोई ना भी हो, अपना रेडियो चल रहा है तो अपना दिल

0: भरा रहता है, कोई दुख नहीं, कोई वो नहीं।
1: जी
0: रेडियो सुनते रहते तो सारे गम दूर हो जाते हैं।
1: तो आकाशवाणी ने एक तरीके से आपके सुख दुख के पलों में अपना हाथ बटाया है, जब आप अकेले हुए हैं, जब आप तन्हा हुए हैं, उसने अपना कांधा आगे किया है, अपने हाथों को आगे बढ़ाया है
0: जी सर।
1: आपकी तन्हाई को दूर करने में,
0: हाँ
1: आपके एकाकीपन को बांटने में आकाशवाणी आपकी साथी बनी है।
0: जी सर।
1: जी चलिए, तो इसी खुशी के मौके पर एक गीत आपके नाम करते हैं, आप इस गीत को सुनिए और खो जाइए आकाशवाणी के इन खूबसूरत पलों में। नमस्कार
0: सर। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: हाँ
1: सर,
0: जी नमस्कार जी।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी राजू जी, आगरा से
1: जी
0: आपने
1: सर,
0: फ़ोन लगाया है। क्या हाल चाल है इन दिनों आगरे के?
1: आगरा में हालचाल ठीक है। मौसम आजकल बहुत सुहाना हो रखा है। बारिश सुबह भी यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, और पिछले कहा जाए तो लगभग अप्रैल महीना पूरा ही बारिश और आंधी में गया। मई का महीना भी लगभग ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि
0: अच्छा
1: आज
0: अच्छा
1: 8 मई हो चुकी है, तब भी मौसम एकदम खुशगवार है।
0: अच्छा जी, तो मोहब्बत की नगरी में इन दिनों माहौल और फिजाएं बहुत ही खुशनुमा हैं।
1: जी
0: हम
1: बिल्कुल।
0: आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है, और इस कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं कि रेडियो ने, आकाशवाणी ने आपके जीवन को कितना समृद्ध किया है। कौन सी ऐसी सीख है जो आपने रेडियो से सीखी, आकाशवाणी से सीखी है? कोई ऐसी
1: रेडियो से
0: बात या
1: सबसे बड़ी
0: याद?
1: चीज़ तो हमने ये सीखी कि हमें दूर दूर के श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि हमारा एक ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र क्लब है जो हमें जोड़ता भी है, रेडियो से भी जोड़ता है और श्रोताओं से भी जोड़ता है, क्योंकि हम कई सारे केंद्रों पे इन्वॉल्व रहते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन वाले जो स्टेशन है आकाशवाणी के। और ये जो ब्रज रेडियो श्रोता मित्र क्लब है, ये कई सारे केंद्रों से जुड़ा रहता है, और इसका यही काम है कि श्रोताओं को रेडियो से जोड़ना। और रेडियो का जो काम है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये रेडियो का सिद्धांत रहा है शुरू से आकाशवाणी का। तो रेडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, अच्छी अच्छी जानकारियां तो मिलती हैं और मनोरंजन भी होता है, साथ ही कई सारे ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। और खास करके हम तो संगीत से जुड़े रहते हैं, तो हमें संगीत के कार्यक्रम, चाहे वो सुगम संगीत हो, प्रेम संगीत हो, लोक संगीत हो, या फिर जो भी संगीत से जुड़े कार्यक्रम हैं, बहुत पसंद आते हैं, और हम उन कार्यक्रमों को बड़ी चाव से सुनते भी हैं सर।
0: आपकी बातों को अगर हम सार संक्षेप में कहें तो आकाशवाणी ने अपने लोकगीतों को, लोक रागों को, लोक व्यक्तित्वों को अपने इन कार्यक्रमों में जगह देकर हमारी संस्कृति को बचाने में अहम दो योगदान दिया है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी जो पुरानी परंपरागत संस्कृति है उसको जीवंत रखने में आकाशवाणी की अहम भूमिका है, चाहे वो होली गीत हो, चाहे वो नवरात्रियों में माता रानी के गीत हो, चाहे दीपावली हो, यानी जितने भी हमारे, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, हर तरह के गीत, हर तरह के संगीत से और हर तरह के जो योग्य कार्यक्रम होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है हमारी देशभक्ति के प्रति, हमारी परंपरागत पौराणिक संस्कृति के प्रति, वो सभी कार्यक्रम प्रसारित करके आकाशवाणी ने अपनी एक अहम भूमिका अदा की है।
0: चलिए, आपकी इसी बात को बढ़ाते हुए आगे हम एक गीत आपकी नज़र करते हैं। आपने हमें
1: धन्यवाद।
0: फ़ोन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू
0: नमस्कार।
1: सर, नमस्कार।
0: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

0: हाँ जी नमस्कार। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, आप अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से। बस
0: अरुण साहब कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: जी
0: और आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आज हमारी बातों का जो विषय है वो है बात आपकी, गीत हमारे कार्यक्रम में, रेडियो ने आपके जीवन को किस तरह समृद्ध किया है? क्या दिया है रेडियो ने आपको, आकाशवाणी ने क्या दिया है आपके जीवन में? ऐसा कौन सा बदलाव, ऐसा कौन सा योगदान किया है जिसे आप रेखांकित करना चाहेंगे?
1: रेडियो में तो सब कुछ दिया है, ज्ञान वर्ग दिया है, सब कुछ दिया है रेडियो ने। तो रेडियो तो जीवन साथी है,
0: अरे वाह।
1: उससे रेडियो तो सबसे जीवन साथी है, कम से कम 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। उससे सब कुछ ज्ञान भी मिलता है, उससे समाचार मिलने को मिलते हैं, खबरें मिलते हैं, और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, क्रिकेट सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, हर चीज मिलती है उससे ज्ञान मतलब।
0: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 25 सालों में ऐसा कौन सा बदलाव खास तौर पर आपको रेडियो पर सुनाई दिया जिसको आप अभी हमारे साथ में साझा जरूर करना चाहेंगे?
1: जी देखो, परिवर्तन तो बहुत हो गए हैं, लेकिन अब इतना जानकारी ध्यान तो खैर नहीं है, लेकिन पहले लाइव चलता था, फौरन जो प्रोग्राम जी सुने, और ये अब रिकॉर्डिंग हो गई, होना चालू हो गया है अब।
0: चलिए, आपने एक बहुत बड़ी बात को पकड़ लिया है कि ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्डेड जा रहा है, इससे पहले ये लाइव जाया करता था।
1: जी
0: आपने लगातार इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति इसी तरह बनाई हुई हुई होगी। हम
1: जी
0: चाहते हैं कि आप इसी तरह आकाशवाणी से जुड़े रहिए। एक गीत अभी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: अंगद फरियाद जिला हमीरपुर तहसील राज ग्राम कैथा से बोल रहे।
1: कौन बोल रहा है जी?
0: अंगद फरियाद
1: अंगद जी कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जिला हमीरपुर तहसील राज ग्राम कैथा से। ठीक
1: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
0: है, बैठे हैं।
1: अच्छा, आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है, और इस
0: हाँ
1: कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि
0: हाँ
1: आकाशवाणी ने आपके जीवन को किस तरह समृद्ध किया है, किस
0: हाँ
1: तरह आकाशवाणी ने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाकया आपके जीवन में जोड़ा है जो आप हमसे इस वक्त बताना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं के साथ में साझा करना चाहेंगे?
0: नहीं अभी नहीं।
1: अच्छा, रेडियो से जुड़ी हुई कोई बात अभी आपको फिलहाल याद नहीं आ रही है?
0: हाँ नहीं आ रही है।
1: तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते आए हैं हमारे?
0: हम कुल कार्यक्रम खुल सुनते हैं। हाँ
1: सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
0: सभी खुल सुनते हैं हम। हमारे पास रेडियो भी है। हाँ
1: अच्छा जी, तो रेडियो पर कौन सा स्टेशन आप सुनते हैं, कौन सा केंद्र सुनते हैं?
0: भोपाल।
1: भोपाल सुनते हैं।
0: हाँ
1: तो भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले किसी खास कार्यक्रम को आप याद करना चाहेंगे?
2: कैसे हो गए?
0: भोपाल सरकारी काम के लिए याद करना चाहते हैं वो कार। हेलो मैम।
1: हाँ जी नमस्कार।
2: हाँ जी नमस्कार, मैं धीरज सिंह परियार बोल रहा हूँ। ग्राम कहता तहसीलदार जिला हमीरपुर से।
1: तो बताइए, आज ये कौन सा ऐसा वाकिया है, कौन सी ऐसी याद है जो आप रेडियो के साथ में साझा करना चाहेंगे आकाशवाणी के
0: रेडियो।
1: जुड़ी हुई? कोई ऐसी बात जिसको आकाशवाणी से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद जिसने आपके जीवन को एक नया मोड़ दिया हो, जीवन को समृद्ध बनाया हो?
0: आकाशवाणी भोपाल तो बहुत अच्छे कार्यक्रम पेश करती है। और
1: चलिए, तो आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे, आइए हम और आप मिलकर ये गीत सुनते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार सर।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी। जी फोन करें कि सुने का जी क्लियर कॉल
0: नहीं,
1: किए हैं, इसलिए फोन लगाया है।
0: आज जो है वो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं 90 सालों तक का जो एक सफ़र किया है, नब्बे
1: हाँ
0: वर्षों की एक जो यात्रा है आकाशवाणी की। इस यात्रा में आप जैसे श्रोता हमारे सहभागी बने हैं, हमारे साथी बने हैं। तो आकाशवाणी ने आपको क्या दिया है इन 90 वर्षों में, या जब से आपने आकाशवाणी सुनना शुरू किया है तब से क्या परिवर्तन आया है आपके जीवन में, क्या ऐसा
1: बहुत
0: योगदान रहा है
1: परिवर्तन
0: रेडियो
1: आया
0: का?
1: है सर। मैं
0: जी
1: हरिशंकर खेमरिया कोलारा जिला शिवपुरी से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी
1: बहुत परिवर्तन आया है और रेडियो सुनने से मेरे सारे सुनता रहता हूँ। और मैं कल अभी बहुत दिन से जे फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लग नहीं रहा था फोन।
0: जुड़ा है, फोन कॉल शामिल किया जा रहा है। तो बताइए ना, रेडियो से क्या ऐसा आपको सीखने को मिला है?
1: बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, सारी गलत बातें छोड़ के और अच्छे विचार, अच्छे आचार, अच्छे गीत सुने, अच्छा मन रहे, अच्छा मनोरंजन हो और परिवार में सुख शांति रहे।
0: तो ये रेडियो ने आपको ये विचार दिए हैं, ये रेडियो की ये आपको देन है कि आप अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा
1: हाँ
0: बोलना
1: अच्छा
0: चाहते
1: सुनना
0: हैं।
1: चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं।
0: वाह, चलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं हम, कि हमारे विचारों को अगर हमने सही दिशा में मोड़ लिया तो हमारे काम सही दिशा में होने लगेंगे, और जब हम अपने अच्छे कामों को करेंगे तो हमारे जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही, सकारात्मक परिवर्तन आएगा ही। हमसे जुड़े लोग भी इस
1: अच्छे
0: बात से
1: कार्य करने
0: लाभान्वित
1: के
0: होंगे।
1: साथ साथ हम भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं सर।
0: वाह वाह वाह वाह, चलिए इसी बात को हम यहीं पर विराम देंगे, एक गीत आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
1: हमारी पसंद का गीत नहीं सुनवाएंगे सर?
0: हाँ, ये आपकी पसंद की गीत तो हम अलग अलग कार्यक्रमों में सुनवाते आए हैं, आज जो है बात आपकी रहेगी, गीत हमारे रहेंगे।
1: अच्छा अच्छा ठीक है सर जी,
0: नमस्कार।
1: ठीक।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: सर जी, मेरा प्यार भरा सप्रेम नमस्कार। मैं नवागढ़ कटे जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: नारायण प्रसाद जी,
1: जी सर,
0: बेमेतरा
1: जी सर,
0: छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया है।
1: जी सर,
0: रेडियो से आपका नाता कब से जुड़ा है?
1: सर
0: क्योंकि
1: जी, ये आपसे
0: आज
1: मैं, हाँ सर जी,
0: जी आज बात आपकी गीत हमारे में, हम इसी विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं।
1: जी सर,
0: हम
1: जी सर,
0: आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेडियो से कब से आपका जुड़ाव हुआ, कब से आपने रेडियो आकाशवाणी को सुनना शुरू किया है।
1: हाँ सर जी, जब से मैं विद्यार्थी जीवन में था सर जी, तभी से मैं रेडियो सुनना चालू किया हूँ। और 82 में सर जी मैं हायर सेकेंडरी किया हूँ, और उसके बाद तो रेडियो से जुड़ा ही रहा हूँ पहले से। और अभी तक मुझे जो रेडियो का सहयोग है, या कहिए तो इनसे जो हमारे लिए देन है, वो बहुत बड़ी देन है सर जी। हमने चलना सीखा, खाना सीखा, पीना सीखा, और जो भी हमारे जीवन में दिनचर्या की बातें हैं वो सब हमने रेडियो से ही सीखे हैं सर जी। रेडियो की जो प्रस्तुति है हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है सर जी।
0: बहुत बड़ी बात आपने कही है कि रेडियो ने आपके जीवन को इस तरह संवारा है, सजाया है कि
1: जी सर,
0: आपने
1: जी
0: अपनी
1: सर,
0: प्रत्येक गतिविधि को रेडियो के माध्यम से सीखा है, रेडियो के साथ जोड़ के रखा है।
1: जी सर,
0: तो 90 वर्षों का जो एक लंबा सफ़र आकाशवाणी ने तय किया है, वह आप
1: जी
0: जैसे श्रोताओं के इन्हीं कदमों के साथ में, साझा किया है। आप बराबर के साझेदार हैं आकाशवाणी के इन गौरवशाली वर्षों के।
1: जी सर,
0: आइए
1: जी
0: एक
1: सर,
0: गीत आपके नाम करते हैं।
1: जी
0: आप इसी
1: सर,
0: तरह आकाशवाणी से जुड़े रहिए। आपको करते हैं हम नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी।
2: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
3: डन
2: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
3: क्या?
2: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
3: है।
2: गलियों के निखार है?
3: हाँ है।
2: तो तुमको मुझसे प्यार है?
3: नहीं।

0: सोमवार है,
1: है,
0: आज सोमवार है,
1: है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी भोपाल।
2: हाँ जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
3: फोन करो, गीत सुनो।
2: आज बात आपकी गीत हमारे,
3: मैं बुरहानपुर से बोल रहा हूँ
2: जी,
3: बुरहानपुर एमपी से।
2: हाँ जी हाँ जी,
3: मोहम्मद हुसैन अंसारी।
2: हाँ जी अंसारी साहब, आज हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आकाशवाणी के जो इन 90 वर्षों की यात्रा के आप और हम साझेदार रहे हैं, साझी रहे हैं, इस यात्रा में आप आकाशवाणी के किस योगदान को हमारे बीच में बताना चाहेंगे, रेखांकित करना चाहेंगे?
3: अरे ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ।
2: हाँ हाँ,
3: बहुत अच्छा लग रहा है।
2: अच्छा,
3: टीवी से बेहतर आकाशवाणी रेडियो रहते हैं। और जब भोपाल आकाशवाणी भोपाल से शुरू हुआ तो बहुत खुशी हुई।
2: चलो
3: अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने राज्य में भी शुरू हो चुका है। बहुत सी मालूमात हासिल हुई है और बहुत अच्छा लगता है।
2: अच्छा जी,
3: 90 वर्ष पूरे होने पे तो और भी खुशी हुई है।
2: आप जैसे श्रोताओं की
3: आगे बढ़े और आगे बढ़े,
2: आप जैसे श्रोताओं की इन्हीं शुभकामनाओं दुआओं के बदौलत ही हमने ये बहुत लंबा लगभग 2 सदियों का सफर तय किया है। आप और ऐसी कोई ख़ास बात या कोई वाकया हमारे साथ में ज़रूर बताना चाहें तो हम उस बात को ज़रूर हमारे दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे।
3: बस बीच बीच में हम बीमार पड़ गए, अटैक आ गया था, तो कुछ अपने जो एक महीने तक सुने नहीं हमने।
2: हाँ
3: तो हाँ, हमको कुछ मालूम आते हासिल हो जाती। जैसे सेहत की तरफ, सेहत के बारे में बताते हैं, जिस्मानी तकलीफों के बारे में बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं। बहुत से प्रोग्राम है अपने आकाशवाणी भोपाल से जो निकल गए दो महीने में, तो हमको उसका बहुत अफसोस है।
2: कहते हैं कि दुनिया बनाई है, इन दुनियाओं को आप हमारे साथ में साझा कर रहे हैं, आपकी इन्हीं बातों को हम इस तरह सजाते हुए हमारे इन कार्यक्रमों को पेश करते आए हैं। आइए एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे, इसी तरह आकाशवाणी और हमारा और आपका साथ बना रहे।
3: मिलाप रहे, मिलता रहेंगे।
2: नमस्कार जी।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: ये भोपाल लगाया है
0: हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं
1: जी सर।
0: और हम इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम के लिए।
1: जी सर गाना सुनना।
0: आज चूंकि विषय हमारा है कि आकाशवाणी के जो 90 वर्षों की यात्रा रही है, इस यात्रा में आपने आकाशवाणी से क्या सीखा, आकाशवाणी का क्या योगदान रहा आपके जीवन में, कौन सी ऐसी बात है जो आकाशवाणी से जुड़ी हुई है और आप उस बात को हमारे दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: आकाशवाणी से सब सीखा है, खेती किसानी का सीखा है और हर चीज आता है और गाना भी सुनते हैं। खेला है हम
0: अच्छा जी,
1: रेडियो बगल में चलता रहता है।
0: अच्छा, काम के साथ में आपका रेडियो हम सफर बना हुआ है ये कह सकते हैं।
1: रेडियो से हर चीज मिलती है सर, हर काम सीखते हैं।

0: मिलती होंगी जिनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर हुआ होगा।
1: हाँ लाभ हुआ है सर, लाभ हुआ है।
0: जी, तो ऐसा कोई पल जो आप हमको ज़रूर बताना चाहेंगे।
1: आकाशवाणी से सबसे ज्यादा सीखा है खेती किसानी का।
0: अच्छा,
1: हाँ ये वैज्ञानिक लोग जो बात है बताते हैं देश में, उन्हीं को उसी से दवा लेकर बाजार से दवाई का छिड़काव है चीज, खेती का जो उपचार करने बीज का वो भी सीखता रहता हूँ उसी तरीका से खेती कर।
0: आपकी खेती है?
1: जी
0: अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जो कार्यक्रम आते हैं, जो किसान भाइयों के लिए रहते हैं, जिनके माध्यम से हम तरह तरह के मौसम से जुड़ी हुई सलाहें
1: हाँ
0: हमारे
1: मौसम
0: श्रोताओं
1: से
0: तक
1: जुड़ा
0: पहुंचाते हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक हमारे अलग अलग मुख्तलिफ कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति के माध्यम से जो जानकारियाँ देते हैं, इन जानकारियों से आप जैसे किसानों को, आप जैसे अन्नदाताओं को लाभ होता है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण होता है। हम अलग अलग कार्यक्रमों को लेके आते हैं, अलग अलग श्रोता वर्गों के लिए कार्यक्रम लेके आते हैं, तो जिन कार्यक्रमों को हम किसान भाइयों के लिए पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उन कार्यक्रमों से अगर हमारे किसान भाई लाभान्वित होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। आइए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे
1: जी।
0: और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: और इसी के साथ ख़त्म होता है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यता गदात्मा के शाश्वत आवास के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हैं आप सभी के पत्रों के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप सभी की फरमाइश से। लिखने वाले हैं नहेर नगर महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस, शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि। उपाध्याय नगर देवा से मुरलीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। देवा से ही राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश, हरिराम माली, विष्णु, कपिल और निरंजन। उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद, सालग्राम, दशरथ। और देवा से ही जमीर खान, इमरान और फुरकान। आप सभी ने सुनना चाहा है एक दूजे के लिए फिल्म का नगमा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं बहू बेगम फिल्म का नगमा, जिसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं विद्यानगर तेंदुखेड़ा से ओम प्रकाश नेमा, किरण, आकाश, विकास, नंदिनी, शिवांश और इनके परिवार के सभी सदस्य, धमतरी से रामचंद मखीजा, शंकर लाल, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक, शोभा और समस्त इनके परिवार, इन्होंने ये हमें ख़त लिखा बठिंडा से। सिंहपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा, आप सभी ने सुनना चाहा है हमराज फिल्म का नगमा अलका याग्निक की आवाज़ में।

मैं हूँ ना फिल्म का गीत सुनने की ख्वाहिशमंद है। महाराष्ट्र बीट शहर से प्रकाश बागरिया, प्रयाग, प्रदीप और केशव पटेल, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जारूजिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू। तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और सुनवाते हैं मैं हूँ ना फिल्म का ये नगमा।

औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल, राजदीप, राशि और इनके परिवार के सभी सदस्य। सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, मोहम्मद शादाब खत्री और रमेश गौंड। आप सभी ने सुनना चाहा है टाइगर जिंदा है फिल्म का नगमा, तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

0: तो श्रोता, ये था आज का हमारा आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आप इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। ये आकाशवाणी का आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
4: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
5: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं जादूगर को सलाम धारावाहिक का 10वां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। धारावाहिक की 10वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की ही एक कहानी, गुप्त धन का नाट्य रूपांतरण। बाबू हरिदास का ईंटों का भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और भट्टों से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों में सजाते। एक आदमी भट्टे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियां मिला करती। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से दबे हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य होता था। सबसे करुण दशा एक छोटे से लड़के की थी, जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दूनी ईंटें उठाता और सारे दिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता था। लेकिन मगन सिंह को अपने काम से ही काम था। उसमें लड़कपन की चंचलता नहीं थी, ना शरारत और ना ही होशियारी। यहां तक कि उसके होठों पर कभी हंसी भी नहीं आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर बहुत दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दे। कभी कभी उसे वो कुछ खाने को भी दे देते थे। एक दिन उन्होंने मगन सिंह को अपने पास बुलाकर बैठाया और उसका समाचार पूछने लगे।
1: मगन सिंह बेटा, जरा अपने और अपने परिवार के बारे में तो कुछ बताओ।
2: जी बाबूजी, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ।
1: अच्छा।
2: वही हमारा पुराना सा घर है, जिसमें मेरी बूढ़ी माँ के सिवा और कोई नहीं है। माता एक पुराने रोग से पीड़ित हैं, इसलिए घर का सारा काम मेरे जिम्मे में है। बाबूजी, शाम को काम से वापस लौटकर मैं खुद ही रोटियां बनाता हूँ, तब जाकर हम माँ बेटे को खाना नसीब होता है। हम ठाकुर लोग हैं और किसी समय हमारा खानदान धन संपन्न था और शकर का कारखाना चलता था, कुछ जमीन भी थी, पर आजकल रोटियों के लाले हैं।
1: गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते?
2: वाह, उनका वश चले तो मुझे मार ही डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं।
1: तुम्हारा तो पुराना घर है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुम्हें कुछ बताया नहीं?
2: नहीं बाबूजी, कुछ नहीं बताया। अगर रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती।
1: मगन, आज से तुम्हारे बुरे दिन दूर हुए, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज से तुम मजदूर नहीं हो, मेरे खास नौकरों में से हो। आज से कोड़ियां बांटने का काम तुम करोगे।
2: जी बाबूजी, आपको पाकर मेरा जीवन सफल हो गया।
1: मुंशी जी।
3: आया हुजूर।
1: मुंशी जी, आज से ये कौड़ियां बांटने का काम करेगा, इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखा दीजिए।
3: माँ, माँ।
4: हाँ बेटा, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है।
3: हाँ माँ, आज से हमारे बुरे दिन दूर हुए। माँ, जहाँ मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, वही बाबूजी के यहाँ, हाँ वहाँ आज बाबूजी ने मुझे अपने पास बिठाया। उन्होंने बहुत सारी बातें की और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा।
4: अच्छा, मेरे बारे में पूछा?
3: उन्हें मुझे काम में तरक्की भी दे दी है। अब मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मैं उनका खास नौकर बन गया हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने की बात भी की है। माँ, और फिर तुम भी जल्दी अच्छी हो जाओगी। माँ
4: अच्छा। अच्छा मेरे लाल, जीते रहो मेरे बेटे, जुग जुग जियो मेरे बच्चे। हे भगवान, तूने मेरे अंधियारे घर में रोशनी की एक नई किरण भेजी है, जिन्होंने मेरे लाल को ये खुशी दी है। तुम उनका भी घर खुशियों से भर देना, हे भगवान, खुशियों से भर देना। बेटा मगन, वहाँ पर मन लगाकर काम करना, अच्छा? उन्हें किसी भी शिकायत का मौका मत देना।
3: हाँ माँ, ऐसा ही होगा।
0: अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यनिष्ठ और चतुर लड़का था। मगन सिंह काम पर हमेशा समय से पहुंचता और कभी भी छुट्टी नहीं करता था। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी वो कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, भट्टे में पानी भरा हुआ था, काम धंधा बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से काम पर नहीं पहुंचा था। हरिदास को चिंता हुई, कई आदमियों से पूछताछ भी की, पर कुछ पता नहीं चला। 4th दिन पूछते पूछते मगन सिंह के वो घर जा पहुंचे। घर क्या था, घर तो जैसे खंडहर बन चुका था, लेकिन परिवार की पुरानी संपन्नता का एहसास करवाता था।
5: क्या बात है, 3 दिन हो गए, मगन सिंह का कुछ पता ही नहीं। कहीं बीमार तो नहीं हो गया या कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? मगन सिंह, बेटा मगन सिंह, अरे कोई घर में है क्या?
3: अरे बाबूजी, आप आइए, बाबूजी आइए आइए।
5: अरे मगन सिंह, कई दिन से आया क्यों नहीं, माताजी का क्या हाल है?
6: बाबूजी, अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं, कहती हैं नहीं बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कहा, पर मैं संकोच के मारे आपके पास नहीं आ पाया। अब आप सौभाग्य से हमारे घर आ गए हैं, तो जरा चलकर उन्हें भी देख लीजिए, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
0: सारे घर में दरिद्रता का वास था, केवल 2 कोठरियां गुजर करने लायक थीं। मगन सिंह ने 1 कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बुलाया। हरिदास भीतर गए तो देखा कि लकड़ी के तख्त पर पड़ी एक वृद्धा कराह रही है।
4: बड़ी दया की आपने मालिक, आपके दर्शनों की अभिलाषा थी मुझे, मेरे अनाथ बच्चे के अब आप ही नाथ हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, बस वही निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। एक समय हुआ करता था जब हमारे घर में लक्ष्मी का वास हुआ करता था, मगर बुरे दिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने उसी दिन के लिए कुछ खजाना जमीन में छुपा दिया था। मालिक उसके कागज पत्र बड़े यत्न से संभाल कर रखे थे मैंने, पर बहुत दिनों से उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मालिक। नहीं तो आज हमारी इतनी बुरी दशा नहीं होती। मालिक, आज 3 दिन हुए मुझे वो कागज पत्र अचानक खुद ही रद्दी के कागजों में मिल गए। बस तब से उन्हें छिपा कर रख लिया है, उसमें सब बातें लिखी हैं, उसी से खजाने के ठिकाने का भी पता चलेगा। मालिक, अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा मालिक। बस यही सब कहने को आपको बार बार बुलाती रही। आपके सिवा मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। संसार से विश्वास उठ गया है मालिक, किसी की नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।
0: हरिदास ने उस कागज का जिक्र किसी से नहीं किया। हरिदास की नीयत बिगड़ गई। कागज को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 कदम दूर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह कि किसी को कानों कान खबर ना हो। काम मुश्किल था, नाम पर धब्बा लगने की अधिक आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर निष्ठा थी, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की तरह पाला, उसी के साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे, परंतु अंत में लालच ने विवेक को हरा दिया।
5: मैंने कभी धन का परित्याग नहीं किया और न करूंगा। क्या कोई प्राणी ऐसा भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो? यदि है तो वो मनुष्य नहीं, देवता है। मैं तो सिर्फ एक मनुष्य हूं, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने की कोई इच्छा नहीं है।
0: मन को समझाना बच्चे को जैसे फुसलाना है। हरिदास शाम को सैर करने के लिए घर से निकल जाता। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर जा बैठता और एक कुदाली से उसे खोदता रहता। चबूतरा लंबा चौड़ा था, उसे खोदते खोदते एक महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय ना हुई थी। हरिदास एक विचारशील पुरुष थे, आत्मा बार बार उन्हें धिक्कारती, निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर कभी नहीं जाऊंगा। पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता, बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। और इसी तरह दूसरा महीना भी बीत गया।
7: आज चबूतरा खोद डालूंगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, पर कोई चिंता की बात नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हो जाएगा कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तहखाना न मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा है, और धोखे के सिवाय कुछ नहीं। कहीं सचमुच तहखाना न मिला तो मुफ्त में ही उल्लू बनूंगा। पर लेकिन नहीं, कुदाली खट खट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चमक है, तहखाना मिल गया, तहखाना मिल गया। ये सिर में दर्द कैसा है? शायद थकान के कारण होगा। नहीं, ये बीती रात नींद पूरा न होने से है शायद।
0: ये दर्द और थकान नींद से ना गई। रात को ही हरिदास को जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे, पर किसी दवा से भी फायदा नहीं हुआ।
7: कहीं ये मेरे लालच का दंड तो नहीं है? जी में ऐसा आता है कि मगन सिंह का कागज दे दूं और माफी मांग लूं, पर भेद खुल गया तो नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। अरे
0: और इस प्रकार हरिदास गुजर गए। हरिदास की मृत्यु के बाद वो कागज उनके बेटे प्रभु दास के हाथ लगा। ये कागज मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। पिताजी कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर संदेह किया ही नहीं जा सकता। जब उन्होंने इस काम को गलत नहीं समझा तो मैं ही ऐसा क्यों सोचूं? कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख का जीवन बीते। इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही प्रभुदास घर से बाहर निकला। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थीं और वही तेज कुदाली थी। ऐसा क्या होता मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही हो। तहखाना संगीन था, पुराने जमाने का मसाला था। कुल्हाड़ी लौट लौट आती थी लेकिन चट्टान टस से मस ना हुई। किसी से सहायता मिलने की सूरत ही नहीं थी। सारा काम स्वयं ही करना था। समय बीतता रहा, यहां तक कि फिर वही अमावस्या की काली रात आ गई। प्रभुदास को जोर लगाते लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य की रेखाओं की तरह अटल थीं। आज इस समस्या का हल करना आवश्यक है। मेरे मन की लालसा मन ही में न रह जाए। क्या करूं, बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। हाँ, क्यों ना बारूद से उड़ा डालूं। कल पर काम छोड़ने का अब तो कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ, बाजार जाकर अभी बारूद लाना होगा। अरे, सब दुकानें बंद हो चुकी, रात भी काफी हो चुकी है। हाँ, वो आतिशबाजी की दुकान अभी खुली है। हाँ, शायद बारूद वहां मिल जाए, उसी से जाकर पूछता हूँ।
8: बारूद इस समय नहीं मिल सकता भाई, सरकारी हुकुम नहीं है। तुम कौन हो जी?
0: अरे, तुम्हें इससे क्या मतलब है?
8: लेकिन इस समय बारूद लेकर क्या करोगे भैया? कोई वारदात हो जाए तो? ना भैया ना, मैं मुफ्त में बंधा बंधा फिरूंगा, तुम्हें कौन पूछेगा?
0: अब तो हो जाएगा ना, क्यों?
8: ठीक है भैया, ले जाओ, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कह देता हूँ। हाँ,
0: आखिरकार खजाना मिल ही गया। इसमें तो बहुत वजन है, क्या मैं इसे उठा पाऊंगा? लगता है 10 से 12 हजार मोहरे तो होंगी। कोशिश करता हूं। सच में जीवन बदल जाएगा, सब मेरे वश में होगा, फिर जो चाहे मैं कर सकूंगा। लेकिन कहां छुपाऊं ये खजाना? हाँ, ये जगह सुरक्षित है, अपने शयन कक्ष में ही अपनी आंखों के सामने रखता हूं। यही ठीक रहेगा। चलो भैया, ये भी हो गया, कुछ देर अब आराम करूं। ये क्या मेरे दिल में बेचैनी सी कैसी हो रही है? ये कैसा भीषण दर्द हो रहा है। अरे, ऐसा तो पहले कभी महसूस ही नहीं किया। अरे, ये तो मेरे दोनों कंधे भी जकड़े जाते हैं, अब सांसें भी रुकी जाती हैं।
9: ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे तो हाथ पैर बोझिल हो चले। क्या क्या ये सब थकान की वजह से?

0: सारी रात मीना और मां प्रभुदास के सिरहाने बैठी रहीं। वैद्य जी उपचार करते रहे, परंतु सब बेकार। बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था, और इसी में सारी रात निकल गई।
1: भट्टे पर चलिएगा हुजूर, गाड़ी तैयार है।
2: नहीं, मैं आज नहीं चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है। मगन सिंह, एक काम करो, तुम भी मत जाओ आज।
1: सरकार, डॉक्टर साहब को बुला लाता हूं, आप आराम कीजिए।
2: कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मगन सिंह, कुछ नहीं हो सकता।
0: सवेरे के 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। बाबू हरिदास की अंतिम दशा आंखों के सामने तैर गई। ऐसा जान पड़ता था मानो वही शोक घटना उन्हीं आंखों के सामने दोबारा घटित होने जा रही हो। मां देवताओं की मनोतियां मना रही थी, और यही हाल प्रभुदास की धर्मपत्नी मीना का था। परंतु प्रभुदास की आंखें उसी संदूक की ओर लगी हुई थीं।
3: हे भगवान, मेरे बेटे के जीवन की रक्षा करो, इसे क्या होगा। हे भगवान, हे प्रभु, मेरी सुहाग की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए।
4: हाँ भैया, पिता और पुत्र दोनों ही भले लोग थे।
5: हाँ भैया, सही कहते हो, पर एक बात समझ में नहीं आती, जैसा बाबू हरिदास के साथ हुआ, ठीक वैसा का वैसा प्रभुदास के साथ हो रहा है।
6: हाँ भैया, ये कैसी दैवी विपत्ति इनके घर पर आ गई।
7: लाला जी, दोनों बाप बेटे भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, ईश्वर ही अब इस घर का मालिक है।
0: प्रभु दास की मृतप्राय आंखों में आंसू थे, पर आंखें अभी भी निराशापूर्ण भाव से संदूक पर ही टिकी थीं। प्रभु दास के हाथ पांव सर्द हो चुके थे, मुख निस्तेज हो चुका था, हृदय गति बंद हो चली थी, सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, लेकिन आंखें थीं जो अभी भी संदूक से नहीं हटती थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था, सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण और सबसे भयंकर दृश्य है। मगन सिंह के लिए माता की मृत्यु के उपरांत ये इतने कम समय में तीसरा अवसर था।
8: मालिक, मालिक, ये आपको क्या हो गया मेरे अन्नदाता मालिक।
2: मगन सिंह की ओर देखता हूं तो सारे शरीर में मानो जीवन का संचार हो जाता है, और संदूक की ओर देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। मगन सिंह, मगन सिंह, इधर आओ
8: मालिक,
2: इधर
8: मालिक।
2: ये संदूक तुम्हारे पुरखों का खजाना है, तुम्हारी अमानत है। हाँ मगन सिंह, ये तुम्हारी अमानत है, मुझे और पिताजी को क्षमा कर देना। पिताजी को और मुझे क्षमा कर देना, चाहता हूं।
8: मालिक, मालिक।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 10वीं कड़ी, गुप्त धन। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय, साक्षी राय, कनिका शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, मनहा प्रत्यक्षा, माधवा अनंत, हीरेंद्र झा और विकास बाबू शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोचिशे बोशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा के शाश्वत आवास के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कूनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। यह दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

जिंदगी में आए इम्तिहानों से घबराइए नहीं, बल्कि शुक्रिया कहिए उस परमात्मा को जिसने आपको इम्तिहानों के काबिल समझा है। इस सुविचार के साथ हाजिर हूँ मैं कल्पना मिश्रा, आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। नमस्कार बहनों, आज हम सरकार की एक और योजना पर बातचीत साझा करेंगे जो कि महिलाओं के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है नंदिनी सहकार योजना। ये योजना माननीय प्रधान

मंत्री द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप शुरू की गई थी। ये योजना महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहायता की एक और पहल है। यह महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इसमें महिला उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और अन्य योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी और ब्याज अनुदान जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को एकीकृत किया गया है। बहनों, इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC के तहत महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का पहला उद्देश्य वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करके सहकारी क्षेत्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे कई क्षेत्रों में भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है, जिससे महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर मिल सकें। इस योजना की विशेषता ये है कि यह सहकारी व्यावसायिक उद्यमों को प्रोत्साहित करके महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही विकास गतिविधियों के लिए महिला सहकारी समितियों को कम लागत वाली वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर देता है। तो बहनों, बातें हम और भी करेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। अब आइए सुनते हैं एक गीत जिसे हमने लिया है फिल्म हीरा पन्ना से और जिसे अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

अभी हमने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म हीरा पन्ना का ये गीत सुना। बहनों, आज का परिवेश ऐसा है कि लोगों को सुंदर और आकर्षक दिखना बहुत पसंद होता है। हर कोई सजना सवरना चाहता है और हम महिलाओं में तो इसका क्रेज बहुत ही ज्यादा होता है। इसके लिए हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ब्यूटिशियन बनना एक ऐसा काम है जो रोजगार का बहुत ही अच्छा माध्यम बन गया है। तो बहनों, ब्यूटिशियन एक प्रशिक्षित पेशेवर होती हैं, जो लोगों को सुंदर दिखने और बेहतर महसूस करने में हमारी मदद करती हैं। उनका काम है त्वचा की देखभाल और मेकअप से लेकर हेयर स्टाइलिंग और नेल केयर तक कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा वो सैलून, स्पा में या फ्रीलांसर के रूप में भी काम करती हैं। और बहनों, फेशियल, हेयर कट, हेयर कलर, वैक्सिंग और मैनीक्योर पेडीक्योर जैसी सेवाएं भी देती हैं। बहनों, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और ब्यूटिशियन के क्षेत्र में कैरियर के बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। 2026 तक यह उद्योग बहुत आगे बढ़ा है और इसमें नौकरी व स्वरोजगार के बेहतरीन विकल्प हैं। जैसे आप खुद का सैलून या पार्लर शुरू कर सकते हैं, जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। इसके अलावा आप शादियों, पार्टियों या इवेंट्स में फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। बहनों, आजकल नेल आर्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसमें भी अच्छा कैरियर है और आप किसी बड़े सैलून, स्पा या वेलनेस सेंटर में सीनियर ब्यूटिशियन के तौर पर भी काम कर सकती हैं। बड़े पैमाने पर देखें तो फिल्म, टीवी या फैशन शो में मेकअप आर्टिस्ट की भूमिका निभा सकती हैं। बड़ी एयरलाइंस कंपनी एयर होस्टेस के लिए मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन नियुक्त करती है। साथ ही ब्रांड्स के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए कॉस्मेटिक कंपनियां कंसल्टेंट नियुक्त करती हैं और अगर आपको अनुभव है तो आप ब्यूटी स्कूल या एकेडमी में अपनी सेवाएं दे सकती हैं। बहनों, इस क्षेत्र में करियर शुरू करने के लिए प्रमुख कोर्स आपको करने होंगे, जैसे डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, ये कोर्स 12 महीने का होता है, हेयर डिजाइनिंग और कलरिंग कोर्स, मेकअप आर्टिस्ट कोर्स और स्किन केयर या फेशियल कोर्स। बहनों, एक ब्यूटिशियन में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो हैं बालों की स्टाइलिंग, कटिंग और कलरिंग, मेकअप करना, स्किन केयर ट्रीटमेंट और फेशियल, साथ ही त्वचा की समझ और प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। बहनों, अब वक्त है छोटे से अंतराल का और आइए एक और गीत सुन लेते हैं। फिल्म है मेरे जीवन साथी, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने।

0: अभी हमने किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना, फिल्म थी मेरे जीवन साथी। बहनों, आज है हमारे बीच वंदना द्विवेदी जी, जो कि एक ब्यूटिशियन है। पिछले 20 वर्षों से वो इस क्षेत्र में जुड़ी हैं। तो चलिए उनसे करते हैं विशेष बातचीत। विषय है ब्यूटिशियन में रोजगार की संभावनाएं।
1: आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आप एक ब्यूटिशियन है, तो पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने ये क्षेत्र क्यों चुना।
2: मुझे शुरू से शौक था कि मैं इस फील्ड में आऊं और इसमें काम करूं, पर थोड़ी सी समस्या आई मुझे इसमें आने के लिए, पर हो गया। मैंने इसको शुरू किया और मुझे 20 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए। आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं पूरी अपने जोश के साथ काम कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा बाहर जाना, बच्चे छोटे थे तो बाहर नहीं जा सकती थी, घर में इतना अलाउ भी नहीं करते थे कि मैं बाहर जाऊँ या इस फील्ड में आऊँ, लेकिन मुझे शौक था। तो जब छोटी छोटी क्लासेस यहाँ होती रहती थी तो वो मैं अटेंड करती थी, सेमिनार्स अटेंड करती थी, उससे मैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके सीखती रह गई। फिर बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हुए तो मुझे लगा नहीं, अब इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे आ गए। पहले मैं अपने घर के पास ही एक छोटा सा लेके सलून वहाँ चलाती थी, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ।
1: मैडम, हर रोज फैशन का ट्रेंड बदलता है, तो आप ट्रेंड के साथ खुद को कैसे अपडेट रखती हैं, वो भी आप हमारी श्रोताओं को बताइए।
2: फैशन तो हमारा हर तीसरे दिन चौथे दिन चेंज होता रहता है, लेकिन क्या होता है कि क्लाइंट हमारी जैसे डिमांड करता है। क्लाइंट कभी कभी हम बताते हैं कि नहीं, ट्रेंड ये चल रहा है, आप ये करवाओ, लेकिन नहीं, क्लाइंट बोलता है नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। तो हमारा सबसे पहले ये रहता है कि हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करें। तो फैशन जैसे क्लाइंट बोलता है उस हिसाब से हमको काम करना पड़ता है।
1: आपने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया होगा, तो आप हमारी श्रोताओं को बताइए कि कैसे ये कोर्स करते हैं और कितना इसमें वक्त लगता है।
2: ये कोर्स सब अलग अलग रहता है, जैसे कोई 3 मंथ्स का करता है, कोई 6 मंथ्स

0: का करता है, कोई 12 मंथ का करता है। मेनली बेसिकली ये 6 मंथ का कोर्स होता है जो हमारा ब्यूटिशियन कराता है। फिर प्रैक्टिस रहती है, प्रैक्टिस अब ये अपने दिमाग के ऊपर, अपने मेहनत लगन के ऊपर होता है कि हम इसमें कितना टाइम लगा देते हैं। जो अगर दिमाग अच्छा और मेहनत किया तो वो 3 महीने में भी कोर्स कंप्लीट कर लेता है। और लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि हर गली हर मोहल्ले में सैलून खुल रहे हैं, तो लड़कियां क्या की कि महीने 2 महीने अपना कोर्स कर लें, बस हमसे बनने लगा और वो खोल ली, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। तो मैं तो हर ब्यूटिशियन को ये बोलूं जो आज की जनरेशन है और इस फील्ड में आ रही है, तो वो पहले सीखे तो ठीक है, सीख तो ली, लेकिन वो प्रैक्टिस करे। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम पीछे ही जाएंगे, तो प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी है। तो कोर्स तो ये 6 मंथ का ही रहता है, 3 मंथ का भी रहता है, बाकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम
1: कितना टाइम लगाते हैं सीखने में। मैडम गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप हमारी श्रोताओं को कुछ ब्यूटी टिप्स देना चाहेंगी?
0: बिल्कुल, गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस समय तो सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, खीरा खाएं, या हमारे किचन से ही बहुत सारे ब्यूटी टिप्स हैं। जैसे दही हो गई, मैं बोलती हूँ क्लाइंट को, दही आप जिस किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो मैं उनको बोलती हूँ आप 2 स्पून दही वो करिए, निकालिए और चाय की छन्नी में डालिए, उसका पानी निकल जाता है, उसमें आप शहद मिलाइए और उसको फेंटिए, वो एक टाइट पैक तैयार हो जाता है। उसको आप फेस में अप्लाई करिए, वो एक ब्लीच का काम करता है। आप जब जाते हैं क्लाइंट यहाँ सैलून में और आप ब्लीच करवाते हैं, वो आपको साइड इफेक्ट कर सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान करता है, क्योंकि उसमें जो एक्टिवेटर रहता है वो अमोनिया रहता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत लोग अपने घर में ही ब्लीच कर लेते हैं और धीरे धीरे स्किन ब्लैक होने लगती है। ज़्यादातर सलून में होता है कि 15 दिन में क्लाइंट आता है और ब्लीच कर दो, ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलती हूँ कम से कम 3 से 4 मंथ आप देख लीजिए उसके बाद। जैसे कोई बोलता है हमको डार्क सर्कल है, तो हम बोलते हैं संतरे, इस समय ऑरेंज बहुत आ रहे हैं, आप लो और उसका जूस निकालो, 1-2 कली संतरे का जूस निकालो, उसमें आप शहद मिलाओ और कटोरी में या बाउल में भर के आप फ्रिज में भी रख दो, कॉटन में लेके आप उसमें डार्क सर्कल में आप अप्लाई करो, पूरे फेस में अप्लाई करो। ये जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। फिर जिनकी ड्राई स्किन हो गई उनको मैं बोलती हूँ आप मलाई ले लो, उसमें शहद मिला लो या एक चुटकी हल्दी उसमें मिला लो, उसको लगाओ, आप एलोवेरा जेल लगाओ। ऐसे बहुत सारी होममेड चीजें हैं जिनको, मतलब मैं तो अपने क्लाइंट को हमेशा बताती हूँ कि आप ये करिए ये करिए। आप खाना भी बना रहे हो, पका पपीता आपके घर में है, वही आप फेस में लगा लो, आप अपने गर्दन में लगा लो, खाना बना रहे हो फिर अपना फेस धो लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि भी बताने लगेंगे तो
1: जी मैडम, मैडम आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और इतने व्यस्ततम दिनचर्या में भी आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, थैंक यू सो मच।
2: अब हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर, जिसमें हम लेकर आते हैं कुछ लजीज और हेल्दी व्यंजनों की रेसिपी। आज के व्यंजन में हम सिकंजी मसाला पाउडर की रेसिपी बताएंगे, जिससे आपको सिकंजी बनाने में सोचना नहीं पड़ेगा। ये मसाला आप बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकती हैं, और फिर जब मन चाहे आप अलग अलग तरह की सिकंजी, छाछ, लस्सी बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब आइए सिकंजी मसाला बनाते हैं। इसके लिए हमें एक कड़ाही को गैस में रखकर फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अब उसमें 2 टेबलस्पून जीरा भूनेंगे। इसे हल्का ही भूनना है जिससे कच्चापन चला जाए। अब भुना हुआ जीरा एक प्लेट में निकाल लेंगे, साथ ही 2 टेबलस्पून कच्चा जीरा, मतलब बिना भुना हुआ जीरा लेंगे। अब 2 चम्मच के करीब साबुत काली मिर्च हम लेंगे। इन सबको ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए। अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें लेंगे 2 से 3 इलायची और 2 बड़े चम्मच काला नमक, साथ ही 1 चम्मच सफेद नमक जो हम रोज में इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें वो हैं जो डाइजेशन को सही करती हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर, और इन सब चीजों को पीस कर एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए और एक एयरटाइट डिब्बे में डालकर स्टोर करके रख लीजिए। बहनों सिकंजी बनाने के लिए हमें शक्कर को घोलने में थोड़ा परेशानी होती है, तो इसके लिए हम एक पैन में लेंगे 2 कप पानी और 2 कप चीनी। अब इसे गैस पर रखकर एक उबाल आने तक पका लेंगे, फिर ठंडा करके

एक बॉटल में कम से कम एक महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं अलग अलग स्वाद की सिकंजी। सबसे पहले फ्रेश पुदीना के पत्ते लेंगे। अब इसे थोड़ा सा कूट लेंगे। अब लीजिए कांच के दो गिलास, उसमें पहले डालेंगे आधा आधा नींबू का रस निचोड़कर। अब जाएगा दो बड़े चम्मच शुगर सिरप जो हमने बनाकर तैयार किया था वो। इसके बाद जो सिकंजी मसाला पाउडर बनाकर रखा था वो एक एक छोटे चम्मच दोनों गिलास में डाल देंगे। अब जाएंगे कुछ आइस क्यूब्स, फिर जो हमने पुदीने के पत्ते मसल कर रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। फिर एक गिलास में हम डालेंगे सिंपल चिल्ड वाटर। फिर डेकोरेट कर दीजिए पुदीने के पत्ते और नींबू स्लाइस से। तो हमारी मार्केट स्टाइल सिकंजी बनकर तैयार हो गई। अब जो दूसरा गिलास हमने लिया था उसमें डालेंगे सोडा वाटर और मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेश ठंडी ठंडी सिकंजी बनकर तैयार हो गई। बहनों, अभी आम का सीजन चल रहा है तो गर्मियों में आम का पना हम बना सकते हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमें लू से बचाता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है। तो इसके लिए लेंगे कच्चे आम, उन्हें उबालकर पल्प निकाल लीजिए, फिर पानी डालकर पतला सा घोल बना लीजिए। अब सिकंजी मसाला और आइस क्यूब डालकर ठंडा ठंडा आम का पना बनाकर पी सकते हैं। बहनों, इस गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और खुश रहिए। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। अब अंत में एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म है असली नकली।

अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, तो दीजिए इजाजत फिर मिलने के वादे के साथ। अपनी बहन कल्पना को नमस्कार।

0: श्रोता बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
4: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
5: GST काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाश।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रामस्वरूप साकेत के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विकास गीत से।

रामस्वरूप साकेत के गाये इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: आज की पेशकश आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं फिल्म नोटबुक से लिए गए इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है विशाल मिश्रा और कमाल खान ने।

0: दर्शन रावल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का था और फिल्म थी लूडो। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करिते छी जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब।
0: राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा,
2: शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। बंगाल में सत्ता का नया सूर्योदय हुआ है और यहाँ पर जंगल राज का अंत हुआ है, गुंडागिर्दी का अंत हुआ है। निश्चित रूप से इस अवसर पर बंगाल के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। कृपया से दोबारा सुन लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा भी जाएंगे, जहाँ वे सरदा धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सरदार धाम परिसर का दौरा भी करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अपने संसदीय क्षेत्र गुना का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। यह ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

0: और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। देश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार और 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा रहा है।
1: अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: वहीं रायसेन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने के निर्देशन में आयोजित इस अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद और चेक बाउंस जैसे राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। आज के लिए 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें नमन किया है। आगरमालवा जिला जेल एवं वृद्ध आश्रम में कल आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में वृद्धजनों को स्वास्थ्य, पेंशन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। जबलपुर में जिला अस्पताल विक्टोरिया और सरकारी संस्था पार्थ के संयुक्त तत्वावधान में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया कल 10 मई को नीमच में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
5: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
4: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफीन नाहर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया

0: और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग

0: पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: क्लोथिंग एंड स्पोर्ट्स और फूड हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस।
2: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
3: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
2: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुड़ेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
5: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का ये पहला गीत लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर में, संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और महराज जहां ने लक्सर हरिद्वार से, बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। फिल्म सीता और गीता के इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, परमानंद आर्य, अभयानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय की भी यही फरमाइश है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित और

आपकी फरमाइश का अगला गीत है हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और उनके परिवार के सभी सदस्य, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली, भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब और उनके सभी साथी, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। साथ ही कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये फरमाइशी पत्र आया है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता का। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह का गाया फिल्म रफू चक्कर का गीत। इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत कल्याण जी, आनंद जी का।

आपकी कसम, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। आरडी बर्मन के संगीत से सजे इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं प्रमिलागंज आलौड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। अभिजीत गवहाणकर, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत प्रिंस और एकांश गवहाणकर ने उमर

0: खेड़ महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश भेजी है। बहादुरा नागपुर से, शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित ध्वनि परी और गवहानकर परिवार के सभी सदस्यों की फरमाइश है। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म आपकी कसम का ये गीत।
1: सुनो
2: कहो
1: कहा
2: सुना।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज में बिट्ठल भाई पटेल का लिखा गीत। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बॉबी फिल्म के इस गीत को सुनवाने की फरमाइश गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य, शिवानी और

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। युवा श्रोता युवाणी कार्यक्रम शाम 5:02 पर सुनेंगे, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। शाम 6:00 आप एक विशेष भेंटवार्ता सुन सकेंगे आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर। आकाशवाणी भोपाल के विशेष प्रस्तुति का दूसरा भाग में आप सुनेंगे साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा और योगदान पर। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत। 7:21 का समय ग्राम सभा कार्यक्रम का होगा, जिसमें गीत संगीत और चर्चा तो शामिल ही होगी, साथ ही आप सुन सकेंगे बुंदेली समाचार और 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुना जा सकेगा। रात 8:00 का समय सुर्खियों में कार्यक्रम का रहेगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00 से सुनेगा, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कलाकार होंगे राजकुमार मजुमदार, आपका संतूर वादन सुना जा सकेगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01 और 15 सेकेंड हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यही समाप्त।

टाइम कर 34 मिनट 54 55 56 चार चौ 35 हो गए। ठीक है, 10 सेकंड का अंतर है।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा का आरंभ कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युव वाणी से।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं जयति
1: और मैं ईरा, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: श्रोताओं, आज है शनिवार, यानी हमारा फोन इन का कार्यक्रम, जिसमें हम करेंगे आपसे कुछ बातें और सुनेंगे आपकी पसंद के गीत।
1: बिल्कुल जयति, ढेर सारी बातें तो हम करेंगे ही हमारे श्रोताओं से, लेकिन जैसा कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग हमारे श्रोताओं से दो प्रश्न पूछते हैं सामान्य ज्ञान के, तो वो पूछ ले पहले।
0: बिल्कुल, और उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि आकाशवाणी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस साहित्यकार ने किया था।
1: और साथियों, दूसरा प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप सभी को खोजने हैं और फिर सही जवाब तो हम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे ही।
0: लेकिन मुझे लगता है ईरा, हमारे कॉलर्स हमसे जुड़ने के लिए बड़े बेताब हो रहे हैं, तो चलिए हम सबसे पहले हमारे पहले कॉलर से बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हेलो फ्रेंड्स।
2: हेलो फ्रेंड जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: नमस्ते प्रेम जी, कैसे हैं आप?
2: नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: चलिए आप बताइए कि आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: जी, युवाणी की तरफ से सुनना चाहूंगा मैं फिल्म का नाम है कोयला।
0: अच्छा।
2: और गाने के बोले देखा तुझे तो हो गई दीवानी।
0: देखा तुझे तो हो गई दीवानी, ठीक है। जब तक आप हमारे सिस्टम में अपना आपका गाना ढूंढ रहे हैं, तब तक आप बताइए कि गर्मी में आपके क्या हाल चल रहे हैं?
2: जी बताऊं, गर्मी तो काफी तेज है अभी 2-3 दिन से, उसमें घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बस घर पे ही रह रहे हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी,
2: कूलर एसी में बैठ के बस आनंद लेते हैं आकाशवाणी।
0: बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमें आपका गीत भी मिल चुका है, आपने आकाशवाणी में कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं ये गीत फिल्म कोयला।

0: आइए इसी के साथ हमारी अगले कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो फ्रेंड। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: जी नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी। और आकाशवाणी इंदौर को हम हमेशा सुनते रहते हैं, बिल्कुल आपके नियमित श्रोता बन गए हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब युववाणी कार्यक्रम, मैं ऐसा मान रही हूँ कि आपका पसंदीदा कार्यक्रम बन ही चुका होगा अब तक।
1: बिल्कुल, मुझे फोन इन कार्यक्रम तो दीदी इतना पसंद है आपका कि ये बहुत ज्यादा पसंद है दीदी, मैं कभी मिस नहीं करता आपका कार्यक्रम।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर बताइए आज क्या फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: दीदी फिल्म का नाम है अखियों के झरोके से, और इसमें एक दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, ये वाला हमको सुनना है दीदी।
0: क्या बात है, और ये दोहा आज एकदम से आपने कैसे इसकी याद आई आपको?
1: दीदी हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे गांव में अभी यज्ञ था, फिर वो श्री राम जी की मतलब स्थापना हुई मंदिर की, मंदिर नया बनाया है, तो वहाँ पर पहले से मंदिर था लेकिन वो टूट गया था तो नया बनाया है।
0: अच्छा।
1: तो भंडारा चला 7 दिन और यज्ञ भी चला, तो उनकी याद में ये गीत मुझे याद आया है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है, और इसके पीछे का जो कारण आपने बताया है, मंदिर की स्थापना, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और आपका जो दोहा आपने सुनना चाहते हैं वो हमें मिल चुका है, तो आइए उसे सुन लेते हैं।
1: दीदी तो बिल्कुल सुनवाइए, तभी तो उसको डेली

0: आइए श्रोता, अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, हेलो।
1: हेलो खाली।
0: नमस्ते
1: हेलो।
0: जी। नमस्ते।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी क्या नाम है आपका?
1: मैं सिटी बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ। मुझे गाना सुनना है, मूवी का नाम है दिल गाने बोले वो प्रिया प्रिया सुना दीजिए।
0: आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट के आ रही है, आप थोड़ा सा माइक के नज़दीक आएंगे।
1: अरे दिल फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ वो प्रिया प्रिया।
0: दिल फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, प्रिया प्रिया।
1: हाँ
0: अच्छा जी, तो जब तक हम हमारे सिस्टम में आपका गाना ढूंढ रहे हैं, बताइए आप कैसे हैं, क्या चल रहा है?
1: मैं तो बढ़िया हूँ। आपके प्रोग्राम सुनते थे अभी, इंदौर भी सुन रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, और कॉल भी लगा रहा थे बहुत अच्छा लग रहा था। आपके इंदौर का सुनते थे बहुत अच्छा लग रहा प्रोग्राम को। आपके इधर मौसम कैसा है?
0: बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप युवाणी के रेगुलर श्रोता हैं?
1: रेगुलर सोता हूँ। उसी गर्मी के मौसम चल रहा है तो गर्मी में मौसमी फल के जैसे लाभ उठाना चाहिए। खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खीरे और कलिंगे हैं, और ये चीज़ें हैं खाना चाहिए गर्मी के मौसम में।

0: ये पानी की पूर्ति देता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बॉडी में पानी की कमी ना हो तो ये सारे फल फ्रूट खाने ही चाहिए। और
0: मैडम ये कहना चाहता हूँ, अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल खुलने वाले हैं कुछ दिन में, तो इसके बाद कहीं भी बच्चे जाते हैं तो घर पे जाते शरारत करते हैं, तो ये छुट्टियों में अब बच्चे के गिल्ली डंडा है, खो खो खेल है, जितने खेल होते हैं बचपन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले
1: जी
0: हम भी जाते थे तो कबड्डी खेलते थे, गेंद खेलते थे, ये चीजें खेलते थे, साइकिल भी चलाते थे छोटे पे, तो बहुत अच्छा लगता। आपने कभी कबड्डी खो खो नुक्कड़ मिच्ची खेली मैडम जी?
1: बिल्कुल, हमने बिल्कुल ये गेम खेले हैं गर्मी की छुट्टियों में। तो ये जो खेल हैं और अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, गली में जो दोस्त रहते हैं उनके साथ खेलने का मज़ा ही कुछ और रहता है। गिल्ली डंडा कम खेला है हमने, लेकिन हाँ दूसरे जो खेल रहते हैं जैसे कि सितोलिया हो गया और
2: खो खो, छुपन छाई, डब्बा ढोल जैसे कितने खेल होते थे बचपन में। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि फोन के ज़माने में अगर कोई जाकर खेल रहा है मैदान में तो वो बहुत अच्छी बात है। तो हमें आपके गाना अभी मिल चुका है, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
0: कहना
2: गीत
0: चाहता हूँ
2: फिल्म
0: जो
2: दिल से।

0: आइए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड।
1: हाँ, मैं श्रीनिवास जय मांडे बोल रहा हूँ।
0: जी श्रीनिवास जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, इंदौर से ही बात कर रहे हैं,
1: बताइए। हाँ, मैं आपका बोल रही हूँ, मैं सोना हूँ।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा ये बात तो हमें जान के। युववाणी कार्यक्रम आप सुनते हैं, और फिर क्या फरमाइश लेकर आए हैं आज आप?
1: यादों की बारात भीमका सुनना है।
0: यादों की बारात, क्या बात है। और फिल्म के बोल क्या है?
1: ओ मैंने रोने मैंने रमन्ना।
0: क्या बात है, गाना तो आपने बड़ा ही सुंदर चुना है। और
1: ओ, ओ, जी, हो गया, मैं बचपन में बहुत बीमार हुआ था।
0: हाँ हाँ,
1: जो आपको मेरी बात अभी समझ में आएगी बराबर।
0: अच्छा जी, आपका जो गीत है वो हमें मिल चुका है, और आप इसी तरह युवाणी कार्यक्रम सुनते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।

0: तमन्ना। चलिए श्रोताओं, हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैम
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: कृष्णपाल परमार, छाइन मैन सोनपुर तहसील देवाजी।
0: नमस्ते कृष्णपाल जी, बताइए आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे।

0: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो जी, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, और बताइए फिर फरमाइश क्या लेकर आए हैं आप?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा राधा का संगम।
0: राधा का संगम, और गाने के बोल बता सकते हैं?
1: जी दो बोल कह के हारे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: वो हमारे वो हम तुम्हारे।
0: क्या बात है, और ये गाना सुनने के पीछे कोई खास वजह?
1: कुछ नहीं है, अच्छा लगता है।
0: सही है, कभी कभी जो गाने हमें अच्छे लगते हैं सुन लेना चाहिए उन्हें, है ना? और चलिए, आपका वो जो गीत है, फरमाइशी गीत हमें मिल चुका है, तो आइए उसे सुनते हैं।
1: आज मेरी बात किन मैम से होगी?
0: मैं इरा, और मेरे साथ जयती आपसे बात कर रहे हैं।
1: जी
0: जी, जी।

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स,
1: नमस्कार। हाँ,
0: नमस्ते जी। क्या नाम है आपका?
1: मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ। मैं पुणे महाराष्ट्र से। हाँ
0: अरे, पुणे से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप?
1: जी, अच्छे बढ़िया।
0: और आज युववाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, लता मंगेशकर का गाया हुआ 20 साल बाद का गाना सुनना है। सपने सुहाने धड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के, ये
0: अच्छा
1: पुराना
0: अच्छा
1: गाना है।
0: जी, बहुत ही अच्छी पसंद है आपकी। तो जब तक हम गाना ढूंढ रहे हैं, तब तक आप बताइए कि महाराष्ट्र में कैसा चल रहा है अभी, मौसम कैसा है?
1: अभी थोड़ी बहुत बारिश हुई कुछ देर पहले, यहाँ थोड़ी बारिश हुई, लेकिन अभी बाद में फिर उमस हो रही है मैडम वापस।
0: इस बार हमने सुना है पुणे में गर्मी का जो मौसम है वो पूरा अधिकतर बारिश ही चली आई, बारिश ही रही है
1: हाँ
0: ना?
1: जी, हाँ
0: वैसे
1: बिल्कुल।
0: जी, अब जैसा कि आपने बताया आप पुणे से हैं, तो पुणे के कौन से एरिया में आप रहते हैं?
1: हम पानशेड करके एरिया है, यहाँ पे डैम है, मतलब
0: अच्छा,
1: पुणे से 40-45 किलोमीटर दूर है, पुणे शहर से काफी दूर है मतलब।
0: जी, अच्छा। और बहुत बहुत धन्यवाद युववाणी कार्यक्रम को सुनने के लिए और आज हमसे जुड़ने के लिए। आप इसी तरह
1: हाँ
0: युववाणी
1: जी,
0: कार्यक्रम को सुनते रहिए और आपका गीत जो है वो हमें मिल चुका है, तो आइए इसे सुनते हैं।
2: हाँ जी।

0: हेलो फ्रेंड।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या बात है, आप तो हमारी नियमित श्रोता हैं।
1: जी मैम।
0: आपकी आवाज़ से तो वैसे मैंने पहचान ही लिया था, लेकिन हमने सोचा कि हमारे सभी श्रोताओं को भी आपका नाम पता चल जाए। तो बताइए, क्या फरमाइश लेकर आए हैं आज आप?
1: लता जी और किशोर कुमार की आवाज है। फिल्म का नाम जाने अनजाने और गाने के बोल हैं, तेरी नीली नीली आंखों के दिल से तीर चल गए चल गए चल गए चल गए ये देख के दुनिया।
0: क्या बात है, चलिए गीत सुन लेते हैं फिर।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं ग्राम बालोदा लखा, जिला उज्जैन से कन्हैया लाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम।
0: मुझे लगता है मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है, आप मुझे लगता है आकाशवाणी के नियमित श्रोता हैं,
1: हाँ हाँ मैडम,
0: है ना?
1: बिल्कुल राइट।
0: जी, मैंने आपकी आवाज से आपको पहचान लिया। आप बताइए, आज आप युवाणी से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैडम राम तेरी गंगा मैली का सुन साहिब सुन प्यार के दिन।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छी पसंद है। चलिए, आज के मुझे लगता है कार्यक्रम का आखिरी गीत भी होगा, तो आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोता, अब हम आ गए हैं हमारे कार्यक्रम के अंत की ओर और उसी कड़ी में वक्त आ गया है कि हम आपको उन प्रश्नों के जवाब दें जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछे थे। और आज का पहला प्रश्न था, आकाशवाणी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस साहित्यकार ने किया था? और इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: और साथियों, दूसरा प्रश्न था, यूनेस्को द्वारा विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका उत्तर है 13 फरवरी। तो हमें उम्मीद है आप सभी ने इन दोनों ही प्रश्नों के सही उत्तर खोजे होंगे
0: और आपको आज का कार्यक्रम पसंद भी आया होगा। अब इजाजत दीजिए मुझे यानी कि जयती
1: और इरा को।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तेरे नाम फिल्म के इस गीत से। जिसे गाया है अलका याग्निक ने।

0: तेरे नाम। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना, अलका याग्निक और साथियों के युगल स्वर में। शब्द रचना समीर की और संगीत हिमेश रेशमिया का।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: श्रोताओ, अब हम आपको सुनवाए जा रहे हैं एक विवाह ऐसा भी फिल्म का गीत जिसे गाया है शान और श्रेया घोषाल ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: एक विवाह ऐसा भी। जी हाँ श्रोताओं, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना शान, श्रेया घोषाल और साथियों के युगल स्वर में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
2: और
3: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: श्रोताओ, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। प्रस्तुति सुषमा व्यास की है।
7: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
1: श्रोताओं, हमारा भारत जो सिर्फ बदल नहीं रहा बल्कि तेजी से विकसित हो रहा है। एक ऐसा भारत जहां सपने देखे नहीं जाते बल्कि उन्हें पूरा करने के रास्ते भी बनाए जाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, विकसित होता भारत के आज के अंक के साथ मैं हूँ सुषमा व्यास।
0: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
1: श्रोताओं, विकसित भारत सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से देश को आगे बढ़ा रहा है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो या उद्यमी हो, हर कोई इस बदलाव का हिस्सा बन रहा है। श्रोताओं, जब हम विकसित होता भारत 2047 की बातें करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये तो एक सपना है, एक लक्ष्य है। एक ऐसा भारत जहां अवसर बराबर हो, जहां विकास हर गांव, हर शहर तक पहुंचे और जहां हर नागरिक आत्मनिर्भर हो। श्रोताओं, 2047 का भारत जहां पर हम नियमों का पालन करते हैं, जब हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, जब हम मुझे क्या मिल रहा है की जगह पर मैं क्या योगदान दे रहा हूं ये सोचते हैं, तभी तो वो भविष्य आकार लेता है। बीज अगर सही से बोया जाए ना श्रोताओं, तो पेड़ भी मजबूत ही उगता है। विकसित भारत का मतलब सिर्फ आधुनिकता नहीं है, विकसित भारत का मतलब है जहां तकनीक आगे बढ़े, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जहां हर नागरिक मैं इस देश का हिस्सा ही नहीं, मैं इस देश की ताकत हूँ ये महसूस करे।

0: श्रोताओ, विकसित होता भारत के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के जनजाति कार्य विभाग के आयुक्त कार्यालय भोपाल से सहायक संचालक अब्राहम नीरज जी, जो जनजाति क्षेत्रों के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: नमस्कार जी, मैं नीरज अब्राहम सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हूँ और जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन में कार्यरत हूँ। हमारा विभाग मुख्यतः जनजाति वर्ग के लिए कार्य करता है और पूरे प्रदेश में हम सभी योजनाओं को लागू करते हैं।
0: सर, हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की। आपके विभाग में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार कर रही है?
1: हमारा मिशन जो है वो 2047 को साकार करना है और इस मिशन में हमारी समस्त योजनाएं हैं जो संचालित होती हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण अभी जो योजना जनजाति वर्ग के लिए लागू की गई है वो धरती आबा के नाम से है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा नाम से जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया है। इस योजना के अंतर्गत 17 विभिन्न विभाग जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा जैसे 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम कार्य करने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा काम है।
0: क्या बात है, वाकई में बहुत बड़ी बात है ये। सर, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में जनजातीय क्षेत्रों की क्या भूमिका है?
1: जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बहुत बड़ा भाग हमारी जनसंख्या का वो जनजातीय वर्ग से है और बरसों से जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए सरकार बहुत सारे कार्यों को, बहुत सारी योजनाओं को संचालित करती आ रही है, परंतु फिर भी जनजाति वर्ग की हमारे देश की प्रगति में बहुत सक्रिय भूमिका नहीं सिद्ध हो पाई है। ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि हमारे पूरे देश में लगभग 63,000 गांव में एक स्पेशल यूनिट बनाया जाए जो केवल और केवल जनजाति वर्ग के विकास के ऊपर काम करेंगे और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे। 63,000 गांव में जब ये काम होगा तो निश्चित तौर पर आप समझ सकेंगे कि कितना बड़ा जनसंख्या का एक वर्ग है जो हमारी मुख्य धारा में आएगा और मुख्य धारा में आएगा तो देश की प्रगति में उसका योगदान निश्चित तौर पर बढ़ना है।
0: बिल्कुल सर, आपने धरती आबा की बात की तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये जनजातीय विकास में एक बड़ा बदलाव ला सकता है?
1: निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। स्वतंत्रता के बाद में ये ऐसी योजना है जो अभी तक की सबसे विस्तृत, सबसे विशाल और सबसे गहन सोच वाली योजना है और ये प्रधानमंत्री जी ने पूर्णतः जनजातीय वर्ग को समर्पित किया है। धरती आबा, आबा वो एक मुंडारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता, तो धरती पिता के रूप में आदिवासी समाज जो है वो बिरसा मुंडा जी को पूजा करता है, उनकी भगवान स्वरूप मानता है उनको, और उन्हीं के नाम पर इस योजना का संचालन हो रहा है। इस योजना में आदिवासी समाज को केवल सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही नहीं है परंतु उनको पूरा का पूरा मुख्य धारा से जोड़ना हमारा लक्ष्य है।
0: बिल्कुल,
1: आप विश्वास कीजिए कि इसका फोकस जो है वो देश के 500 जिले के 63,000 गांव में होने जा रहा है। इन 63,000 गांव में मल्टीपर्पस मार्केटिंग सेंटर होंगे जो ट्राइबल के द्वारा ही चलाए जाएंगे जिसमें वो उनके द्वारा निर्मित चीजों को रख सकेंगे। फिर आश्रमशाला, हॉस्टल्स के रिपेयर इसके अंतर्गत होंगे। 100 सीटर के 120 छात्रावास बनने जा रहे हैं केवल मध्य प्रदेश में, केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं
0: जी।
1: और एक छात्रावास की कॉस्ट जो है वो 5,43,00,000 रुपए है और टोटल बजट जो इसके लिए उपयोग में लाया जाने जा रहा है वो 651 करोड़ के ऊपर राशि इसके ऊपर व्यय होने जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये केवल एक विभाग इतना खर्च कर रहा है और टोटल 17 विभाग जब इसके ऊपर व्यय करेंगे तो एक गांव के अंदर जो विकास होगा वो बहुत विशेष होने जा रहा है
0: जी। तो इस योजना में जनजाति कार्य विभाग के माध्यम से क्या लाभ इस वर्ग विशेष को मिल रहा है, ये भी हमें जरूर बताइए।
1: बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम लगभग 19 मार्केटिंग सेंटर बना रहे हैं जो केवल वर्ग के उद्देश्यों के लिए बनाए जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं जनजातीय कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करते हैं, आर्ट ऑफ पेंटिंग और छोटी छोटी चीजें, लघु उद्योग जो वो निर्मित करते हैं चीजों को, उन चीजों के लिए। तो हर सेंटर पर जितने गांव बनेंगे वहां पर धीरे धीरे इनका विकास किया जाएगा और मल्टी मार्केटिंग सेंटर बनेंगे जो कि शॉपिंग मॉल की तरह होंगे, जहां इन वर्गों को अपना उत्पाद बेचने की सुविधा उपलब्ध होगी।
0: क्या बात है।
1: दूसरा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर विद्यालय उनको अपने गांव में नहीं मिल पाता है जनजाति वर्ग को। तो हमारी बहुत सारी आवासीय सुविधाएं अभी भी चल रही हैं, परंतु और आवासीय सुविधाएं उनके लिए बढ़ाई जाएंगी। स्पेशल स्कूल खोले जा रहे हैं ट्राइबल एरिया में जो सांदीपनी विद्यालय के नाम से संचालित हो रहे हैं। ये एक एक स्कूल जो है लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें 40 स्मार्ट क्लासेस होंगी एक विद्यालय में, और ऐसे 95 विद्यालय जनजाति कार्य विभाग के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन्हीं विद्यालयों में 100-100 सीट के छात्रावास भी बन रहे हैं, जिसमें एक छात्रावास की जो कीमत है वो 5,43,00,000 रुपए होगी, और एक स्कूल में 2 छात्रावास बनेंगे, एक बालकों के लिए और एक बालिकाओं के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम उनको बहुत संबल बनाने जा रहे हैं, उनके उत्पाद को बेचने के लिए उनको हम शॉपिंग सेंटर उपलब्ध करा रहे हैं, तो रोजगार के लिए उनको लोन दिया जा रहा है 5,00,000 रुपए तक का। जब ये सारी बातें उन तक पहुंचेंगी तो निश्चित तौर पर इसके आउटकम्स बहुत बेहतर नजर आएंगे और हम जनजाति वर्ग के लिए एक स्वर्णिम भारत की परिकल्पना बहुत आसानी से कर सकते।
0: वाकई में इस एक योजना के माध्यम से हम जनजाति क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को भी ध्यान में रख रहे हैं, साथ ही युवाओं के लिए हम कौशल विकास और रोजगार के अवसर भी तैयार कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं इस वर्ग विशेष को मिलने वाली है। सर, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना में क्या खास प्रावधान किए गए हैं?
1: महिलाओं के लिए अभी तो सबसे पहले ये है कि जो हमारा शिक्षा विभाग है उसमें हम 50% छात्रावास हमारे जो है वो बालिकाओं के लिए
0: जी।
1: महिलाओं को लोन में प्राथमिकता दी जाएगी अगर वो स्वरोजगार शुरू करती हैं, तो ये उनके लिए बेहतर है। और जो प्रधानमंत्री भवन की योजना है उस योजना में महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति अपना प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत अपना मकान बनाता है और उसमें अपनी पत्नी या अपनी माता का नाम जुड़वाता है तो उसको स्पेशल उसमें प्रावधान किए जाते हैं और उसको उसका लाभ मिलता है।
0: क्या बात है।
1: ये सब इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि महिलाओं का जो सम्मान है वो घर परिवार में बढ़े।
0: ये बहुत जरूरी भी है, खासतौर पर हम जब जनजाति क्षेत्रों की बात करते हैं वहां पर महिला सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है।
0: जी जी। तो विकसित भारत में आपका जो विभाग है वो क्या विजन रखता है?
1: ये मेरा विभाग जनजाति वर्ग के लिए ही कार्य कर रहा है। हम ये जानते हैं कि हम एक ऐसे वंचित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं जो बरसों से मुख्य धारा से अलग है
0: जी,
1: और तमाम प्रयासों के बावजूद अपेक्षित सफलता हमें ग्राउंड पर सामने दिखाई नहीं देते। ये अभियान ने हमें एक नई ताकत दी है और वर्तमान की जो हमारी योजनाएं हैं कि आने वाले समय में हम जनजाति वर्ग के लिए बहुत बेहतर काम करने जा रहे हैं, और 47 से काफी पहले हम इस स्थिति में होंगे कि हम एक स्वर्णिम भारत का विजन केवल भारत को नहीं परंतु पूरी दुनिया को दिखाने की स्थिति में होंगे। कि हमारा विभाग विशेष तौर पर जनजाति वर्ग के लिए काम करता है
0: जी,
1: और प्रधानमंत्री जनमन करके एक और योजना संचालित हो रही है। ये योजनाएं हमें पूरी तरह से ये विश्वास दिलाती हैं कि 2047 का जो विजन है वो हम बहुत पहले ही साकार करने की स्थिति में हो, और ये भरोसा हमें है कि हम केवल भारत को ही नहीं पर हम विश्व को ये दिखा पाएंगे कि जनजातीय वर्ग का उत्थान करने के लिए किस दिशा में, किस गति से, कैसे आगे बढ़कर उनके सपनों को साकार किया जाए। तो हमारा विभाग प्रतिबद्ध है कि जनजाति वर्ग के लिए हम नित्य काम करते रहें और हम हर तरह की योजना उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते हैं और उसको जमीन स्तर तक पहुंचाने में हमारा विभाग सक्षम है। बहुत सारा ग्राउंड स्तर पर हमारा जो स्टाफ है वो उन क्षेत्रों में रहकर ही काम करते हैं।
0: तो आपको क्या लगता है सर कि इन योजनाओं से जनजाति युवाओं का जो पलायन है वो कम होगा?
1: देखिए, जनजाति वर्ग का जो पलायन होता है वो मुख्यतः रोजगार से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी,
1: है ना। तो रोजगार रहता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, वातावरण का, जैसा जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ गई और मजदूरी वहाँ नहीं मिल रही है तो वो पलायन करेंगे।
0: जी,
1: पर जैसे अब हम उनको स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं, उनके द्वारा

0: निर्मित उत्पादों के लिए हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पलायन इससे कुछ हद तक रुकेगा। पलायन जो है वो केवल एक ही फैक्टर नहीं है, हर वर्ग, शिक्षित वर्ग भी पलायन करता है
1: जी।
0: एक इंदौर में रहने वाले व्यक्ति जो है, यदि उसको बेंगलोर में जॉब मिलेगा तो वो भी पलायन करके बेंगलोर जाता है। तो रोजगार के अवसर से कोई जनजाति वर्ग का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो पलायन सकारात्मक, पलायन करने का पर्पस ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है तो वो हमारी देश की प्रगति के लिए अच्छी बात नहीं। हम ये चाहेंगे कि हमारा स्थान जहाँ जनजाति वर्ग रहता है उसको उसी जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य से धरती आबा योजना है और एक गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। मतलब इन बुनियादी ढांचे में पक्के घर, बिजली, पानी, मकान तक नहीं सीमित है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, विद्युत व्यवस्था वहां पर बढ़िया रहे, कौशल विकास वहां पर हो और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी वजह से पलायन बहुत हद तक जो है वो बंद हो जाएगा।
1: और कह सकते हैं ना कि बुनियादी जो जरूरतें हैं उन पर सबका अधिकार होता है, तो एक विशेष वर्ग उनसे क्यों दूर रहे, है ना। ये सारी सुविधाओं का लाभ हर व्यक्ति विशेष को मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो अंत में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे विकसित भारत के इस अभियान में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें?
0: मेरा ये मानना है कि सबसे पहले सकारात्मक सोच होना चाहिए। विकसित भारत का जो विजन है जिस पर हर व्यक्ति की सकारात्मक सोच जो है उसको सच बनाने में मदद करती है। प्रश्न तो हर बात पर उठाए जा सकते हैं परंतु सकारात्मकता जो है वो विश्वास बढ़ाती है। विशेष तौर पर फील्ड में काम करने वाले जो हमारे साथी हैं उनका उत्साहवर्धन हो, सकारात्मक काम जो है उसकी प्रशंसा हो और योजना की कमियों के बजाय उसकी खूबियों के ऊपर फोकस किया जाए। जब हम कार्य के ऊपर ध्यान देते हैं तो कार्य आगे बढ़ता है और हम कार्य की कमियों पर ध्यान देते हैं तो कमियां बढ़ती हुई दिखाई दे। मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोग साथ आए, सकारात्मक सोच रखें, विकसित भारत का सपना जितना सुंदर है उतना ही हमारे काबू में आने के लायक है और हम इतने स्ट्रांग हैं, हम इतने सक्षम हैं कि हम इस सपने को बहुत आसानी से साकार कर सकते हैं।
1: हम सब सक्षम हैं और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं उसे पूरा करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान मिलजुल कर सब दें। वाकई में सर, आपका अनुभव और जमीनी समझ इन अभियान को एक नई दिशा दे रही है। सर, आपसे बातचीत करके वाकई में बहुत सारी जानकारी हमें मिली, खास तौर पर जनजाति विभाग जो काम कर रहा है हमारे ऐसे एक वर्ग के लिए जिनके पास जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी अभाव है, तो आपसे बातचीत करके वाकई बहुत अच्छा लगा। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं उस भारत की जो सिर्फ आज में नहीं जी रहा बल्कि 2047 के सुनहरे भविष्य को गढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो और विश्व में अग्रणी हो। विकसित भारत का रास्ता गुजरता है कुशल युवाओं, मजबूत अर्थव्यवस्था और जागरूक नागरिकों से। जब हर हाथ को हुनर मिलेगा, हर सोच को मंच मिलेगा और हर प्रयास को सम्मान मिलेगा ना, तभी भारत सच में विकसित बनेगा। श्रोताओं, इसी दिशा में एक मजबूत कदम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये योजना युवाओं को न सिर्फ काम करने के लिए तैयार करती है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है। इस योजना के तहत युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार काम पा सके या खुद का काम शुरू कर सके। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को तकनीकी और व्यवसायिक कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, आईटी, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस। इस तरह के बहुत सारे कौशल सिखाए जाते हैं। साथ ही श्रोताओं, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो पूरे देश में मान्य होता है। श्रोताओं, विकसित भारत सिर्फ सरकार का सपना नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने काम को ईमानदारी से करना, नई चीजें सीखना और आगे बढ़ना, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना, छोटे छोटे कदम मिलाकर ही बड़े बदलाव लाते हैं।

0: श्रोताओं, विकसित भारत कोई मंजिल नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर कदम मायने रखता है, हर नागरिक जरूरी है। 2047 का भारत कोई दूर का सपना नहीं है, ये तो आज के हमारे फैसलों में छुपा हुआ है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं और हम किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, यही तय करेगा कि आने वाले सालों में भारत कैसा होगा। तो सिर्फ एक वादा कि जहां हैं जैसे हैं वहीं से कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि जब हर इंसान थोड़ा थोड़ा बदलता है ना, तभी एक देश सच में बदलता है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। तो अब अनुमति दीजिए सुषमा व्यास को, नमस्कार।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का था और कार्यक्रम को प्रस्तुत किया सुषमा व्यास ने।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
1: प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की गायी रचनाएं।

मेहंदी हसन के स्वर में अभी आपने ये रचना सुनी। रचना खुर्शीद हालूरी की थी, संगीत ललित जैन का। श्रोताओं, सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं मेहंदी हसन की गाई गज़लें। लीजिए सुनिए इन्हीं की गाई अगली गज़ल।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सीमा चोरे के गाए निमाड़ी लोकगीतों को। लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में अगली लोक रचना।

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं सीमा चोरे के गाए निमाड़ी लोकगीतों को। लीजिए कार्यक्रम के अंत में सुनिए इन्हीं के स्वर में अगली निमाड़ी लोक रचना।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे सीमा चोरे के गाए निमाड़ी लोकगीतों को। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: हैं, राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण दे देंगे। शाम 7:20 पर किसान श्रोताओं कार्यक्रम खेती गृहस्थी होगा, जिसमें आज की बात होगी कृषक जीवन और कल्याण योजना पर। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात 8 बजे। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 8:15 पर। और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत होगा रात 9:15 पर। राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती का

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारण होगा रात 9:30 पर, और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही हम अनुप्रसारित करेंगे रात्रि 10:00। ये था विवरण आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों को। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। वसुंधरा कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 7:20 पर। इसमें विवेक चौरसिया की वार्ता सुनेंगे जल संरक्षण। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल होगा कल सुबह 7:35 पर। कल के सितारे बच्चे हमारे, ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 8:30 पर। चर्चा होगी मदर्स डे स्पेशल पर, साथ ही बच्चों से कविताएं और प्रेरक प्रसंग माँ के ऊपर केंद्रित हम आपको सुनवाएंगे। प्रस्तुति प्रीति जोशी की होगी। लोक संगीत में गोकुलदास खेड़े और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:00 से। सुगम संगीत में कल सुनिए फाल्गुनी पाठक को। शास्त्रीय संगीत में पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग भीम पलासी हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगी कल सुबह 10:00। और सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन हम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 10:05 से 11:00 तक। श्रोताओं, कल की सांधिकालीन सभा में युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी होगा 5:00। आरंभिक चर्चा होगी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर, साथ ही आज के क्रम में होगा युवा तरंग। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:45 पर। सुगम संगीत में पंडित हरिहरन की गायी रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर। और लोक संगीत में जगदीश यादव और साथियों गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा शाम 6:45 पर। किसान श्रोताओं कार्यक्रम खेती गृहस्थी होगा कल शाम 7:20 पर। आज की बात होगी PM कुसुम योजना पर, साथ ही बात होगी मातृ दिवस पर। सुर्खियों में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा कल रात 8:00। और भोपाल केंद्र से ही अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम डगर विकास की, प्रसारण समय 8:15। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कल रात 8:30 पर। और सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रगीत में रात 9:15 पर। श्रोताओं, आपके मनपसंद फरमाइशी गीत हम आपको सुनवाएंगे कल रात 9:30 से। कार्यक्रम होगा मन भवन। और संगीत का अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा का कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कल रात 10:00। ये था विवरण कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम का। मीडियम वेव 462.96 यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर, सोमवार को सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर में आयोजित होगा रजत जयंती समारोह, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: यह उत्सव सोमनाथ मंदिर की अमर विरासत को सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। यह समारोह वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले दर्ज हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर को दर्शाता है। साथ ही यह 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। सदियों से सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे लूटा गया, लेकिन हर बार भक्तों और शासकों ने इसे दोबारा बनाकर इसकी खोई हुई महिमा को वापस स्थापित किया। यह उत्सव इस महीने की 11 तारीख को मंदिर के शिखर पर होने वाले भव्य कुंभ अभिषेक के साथ समाप्त होगा। इस अनुष्ठान में 11 पवित्र तीर्थस्थलों से लाए गए जल का उपयोग किया जाएगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तनिया, निशिद प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही आज से सुशासन, सुरक्षा और विकास के एक नए युग का शुभारंभ हो गया है।
2: बंगाल सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई।
0: सीजन 2028 में श्रद्धालुओं की सुगमता से स्नान के लिए क्षिप्रा तट पर 29 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नवीन घाट निर्माण किए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह ने आज करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के किनारे पैदल भ्रमण करते हुए घाट तक पहुंचने के प्रस्तावित 30 मार्गों का चिन्हांकन किया। संभागायुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन घाट तक बनने वाले पहुंच मार्ग सुगम और सुव्यवस्थित हों। संभाग आयुक्त ने बताया कि
3: आज के दिन हमारे और हमारी टीम के द्वारा सुबह 6 बजे से निकलकर लगभग 6 किलोमीटर का एरिया जो है कवर किया गया है महाश्रद्धा के किनारे किनारे। और आज के भ्रमण का उद्देश्य है कि हमारे 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं, उन 29 किलोमीटर के घाटों तक श्रद्धालु किस किस पॉइंट से एंट्री लेंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं को सहूलियत भी हो और सभी घाटों का अच्छा प्रयोग भी हो और हमारी जो रोड्स हैं जो घाटों तक लेके आ रही हैं वो आसानी से श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचा सके। लगभग 200-200 मीटर पर हम लोग एंट्री बना रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ

0: पर कल सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस अवसर पर श्री चौहान मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई 2100 किलोमीटर से अधिक होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य की 987 बस्तियों को लाभ होगा। प्रदेश भर में आज आयोजित लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। भोपाल, रायसेन सहित अन्य जिलों में भी आयोजित लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के सरचार्ज में 100% तक की छूट का लाभ दिया गया। प्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयासों को गति मिली है। इसी क्रम में मढ़िया ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड के 131 ग्राम, जैसी नगर के 145 ग्राम, सागर ब्लॉक के 26 ग्राम तथा रायसेन जिले के बेगमगंज विकासखंड की 15 ग्रामों सहित कुल 317 ग्रामों को शुद्ध पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भोपाल में आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी भोपाल के कुल 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये सीरीज 15 मई से 20 मई तक खेली जाएगी, जिसमें देश और विदेश के युवा खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झाबुआ में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने लोगों को तेज गर्मी व लू से बचाव हेतु सावधानी बरतने की सलाह दी है।
1: बढ़ती गर्मी के कारण लू एवं शरीर में पानी की मात्रा कम होना जैसे मरीज जिले के स्वास्थ्य संस्था में बढ़ रहे हैं। यदि आपको बुखार, उल्टी, दस्त, सरदर्द या पेशाब में जलन जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो ये लू अर्थात हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को जिनको लू से खतरा अधिक है वो दोपहर में धूप में ना निकले, अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी, छाछ, नींबू पानी जैसे पदार्थों का सेवन करें।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती। इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबेगो की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबेगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। खंडवा में जल संरक्षण और नदी संवर्धन को जन आंदोलन, कल आबना नदी तट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया गया है। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांचें भी निःशुल्क की गईं। आगरमालवा में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान श्रोताओं का कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी सुनने वाला सगलाज किसान भाई बहन ने नाना नानी होण के धरणीधर मिश्र की राम राम। आओ भाई आओ बैठो न सुनाओ कैसा कहीं हालचाल। हालचाल तो सबज ठीक है, खेती बाड़ी का कामकाज भी सब भलाई चली रहा है न भाई। लोग एक बात और मुझे बताओ कि जो अपना किसान भाई उन सर सरकार की जो योजना ना हुए उन सब योजना ना की जानकारी अपने है कि नहीं है?
1: वो जानकारी अपने सबको होना चाहिए। जैसे एक योजना है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, इन योजना को मतलब कहीं
0: जैसे अपना किसान भाई लोग जो खेती बाड़ी का कामकाज करें, खेतीबाड़ी का कामकाज करते शुरू कभी कोई दुर्घटना हुई जाए, है ना, कभी कोई उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें वे स्थायी अपंगता या अस्थायी अपंगता नहीं, या कभी भगवान न करे कोई भगवान की प्यार हो जाए, तो उन सब का स्वरूप सरकार की यो योजना है। जैसे एक में कभी भगवान न करे मृत्यु हो गई तो 4 लाख रुपया तक सरकार की तरफ से सहायता मिले। स्थायी अपंग हो जाए कभी कोई, है ना, जैसे 100% अपंग हो जाए कोई, मतलब कहना को मतलब, तो उनके 1 लाख रुपया से लेके 4 लाख रुपया तक। आंशिक अपंगता होए जैसे, है ना, मतलब थोड़ी कम, तो उसमें 50,000 रुपया की सहायता मिले। अस्थायी अपंगता होए जैसे कि थोड़ा दिन बाद आदमी ठीक हो जाए, जैसे इलाज कराए ना उनकी अपंगता समाप्त हो जाए, तो उनके स्वरूप 25,000 रुपया की सहायता है। न अंतिम संस्कार का रूप में जैसे किस्मत बहुत ही खराब है, बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हो गई ना अपना कोई, अंतिम संस्कार की नौबत आ गई कोई किसान की, तो उनके 10,000 रुपया तक की अंतिम संस्कार स्वरूपी सहायता मिले हैं। एक ही पात्रता और नियम के बारे में थोड़ी जानकारी बताई ना, एक में उम्र जो है 18 से लेकर 70 साल तक की रहे, और पात्र व्यक्ति कौन कौन है भैया? जो मध्य प्रदेश का किसान जो लोग खेती बाड़ी में ट्रैक्टर थ्रेशर या और दूसरा कृषि मशीनरी का उपयोग करता समय दुर्घटना का शिकार हो जाए। और आवेदन कैसे करना, आवेदन की जानकारी बताई दें भाई। दुर्घटना का 45 दिन का अंदर अपना जिला कलेक्टर कार्यालय में या मंडी समिति में जो आवश्यक दस्तावेज है उनका साथ में आवेदन करना पड़े। जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट जो अपन थाना में हो, FIR है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, न दूसरा अपना जो आवश्यक दस्तावेज है उनके साथ अपन आवेदन कर सका है। तो भाई लोग ये जानकारी अपन भी रखा, नई नई जानकारी की बात जो है अपना साथी किसान भाई उनके भी सबके देवा कि देखो बखत को तो कोई कह नहीं सको आड़ी बखत कब आई जाए, तो इन्हीं बखत में ऐसी बखत में उनके एक सरकार की जो सहायता उनके सबके जानकारी मिलनी चाहिए भैया। तो ये तो भाई अपने आज की बात ना। अब भाई शुरुआत करा अपन चौपाल पे आज लोकगीत से। पहलो लोकगीत अपन सुनांगा बहन उषा रायकवार ना उनकी मंडली को गायो, सुनो भाई।

वाह भाई वाह, इन्हें लोकगीत में तो आनंद आएगा भाई। उषा रायकवार ने उनकी मंडली को गायो, अभी अपन ने सब ने ये लोकगीत सुने, कदी आवेगा जनकपुर ना। अब एक और लोकगीत की बारी है भाई। देखो लोकगीत का तो आनंद ही अलग है, अब हम सुनांगा बहन तृप्ति नागर को गायो ये लोकगीत।

0: वाह भाई वाह वाह। अब ये अपन सबने सुने हो भाई, तृप्ति नागर को गायो ये लोकगीत न भाई लोग। अपने चौपाल पे एक भेंट वार्ता वार्ता न इस तरह की जानकारी भी रहेगी, जिससे हमारा किसान भाई लोग अपना खेती बाड़ी का काम काज और अच्छा तरीका से करे, अच्छी पैदावार ले न अच्छी कमाई करे। तो हमारी एक सहयोगी बहन मनीषा शर्मा ने चर्चा करी थी, हमारा एक प्रधान कृषि वैज्ञानिक रहा है अपना गेहूँ अनुसंधान केंद्र का डॉक्टर डी के वर्मा साहब, तो उनसे एक चर्चा करी थी कि सोयाबीन बुआई से पहले कहीं तैयारी करा। तो ये चर्चा सुना अपन।
1: किसान भाइयों, गेहूं की फसल से अपन सबज निपट चुका है और अपना किसान भाई होन अब योजना बनाई रहा है सोयाबीन की फसल की। अपना किसान भाई बहन होन सोयाबीन को अच्छो उत्पादन पाए, इका लिए उनके अभी से तैयारी करना बहुत जरूरी है। अब यह तैयारी वे कैसे करे और ऐसी कई बात उनको ध्यान रखे जिससे कि उनके सोयाबीन की फसल को अच्छा उत्पादन मिले। अब इन्हीं बात ना की जानकारी तो कई का विशेषज्ञ भाई जी अपने दे सके, तो अपन आज बात करी रिया है डॉक्टर डी के वर्मा, प्रधान वैज्ञानिक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र इंदौर से ई है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो आपके राम राम।
2: राम राम
1: डॉक्टर साहब। अब आप हमारी पहले बतिया बताओ कि सोयाबीन को अच्छे उत्पादन पाने के लिए अपना भाई होने के अभी से तैयारी करना क्यों जरूरी है?
2: किसी भी फसल का अधिकाधिक उत्पादन लेने में उन्नत किस्म तथा उसके गुणवत्तापूर्ण बीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकसित उन्नत किस्मों को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष के निरंतर परीक्षण एवं आकलन में लाभकारी पाए जाने पर ही उन्हें विमोचित किया जाता है। इन किस्मों से किसान भाइयों को अधिक उत्पादन क्षमता तथा विशेष गुण वाले किस्मों के प्राप्ति होने पर विपरीत परिस्थितियों में भी उपज अच्छी दे पाएगी। भारतीय सोयाबीन की प्रजातियों को उपयुक्त जलवायु देश के 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फिर भी जारी की गई कुल 102 किस्मों में से अभी तक सीड चेन जिसको बीज श्रृंखला कहते हैं 35 किस्में बीज श्रृंखला में है। सबसे पहले किसान भाइयों को तो हम यही उम्मीद करते हैं और बताना चाहेंगे तो वो हमेशा उन्नत किस्म का ही प्रयोग करें।
1: खेत की तैयारी करना भी अपनी फसल का लिए बहुत जरूरी है, तो अपना किसान भाइयों सोयाबीन की फसल का लिए अपना खेत के किस तरह से तैयार करें?
2: खेत के लिए सबसे पहले है कि बोने से पहले खेत की गहरी जुताई तथा विपरीत दिशा में पत्थर एवं पाता चलाकर खेत को समतुल करें। मानसून के आगमन के पश्चात 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, 5 सेंटीमीटर बीज की दूरी रखते हुए अधिकतम 3 सेंटीमीटर की गहराई पर 780 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयुक्त सीड ड्रिल BBF या रीज फरो से बोनी करें। बोनी से पहले सोयाबीन के बीज को थायरम एवं कार्बन डाइजीन 2:1 मतलब 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अथवा मिश्रित उत्पाद कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थायरम 37.5% 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। इसके स्थान पर बीज उपचार हेतु ट्राइकोडर्मा विरिडी जो कि हर जगह उपलब्ध है 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का भी उपयोग किया जा सकता है। तत्पश्चात जैविक खाद जिसमें कि ग्रेवी राइजोबियम कल्चर MPSV कल्चर प्रत्येक 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें एवं छाया में सुखाकर तुरंत बोने में प्रयोग करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कोई भी फसल को जब अपन बीज लगाएं उसका पहला बीजोपचार करना जरूरी है, पर बीजोपचार से पहला भी एक पड़ाव और है बीज को चयन। तो अपना खेत, खेत की मिट्टी, अपनी जलवायु के देखते हुए किसान भाइयों किस तरह का बीज को चयन करें, और यो बताओ कि हमारा जो मालवा निमाड़ है उसमें कौन कौन सी किस्म प्रचलित है जिसको उपयोग हमारा किसान भाइयों कर सकता है?
2: वैसे तो पूरे राज्य को, मध्य प्रदेश राज्य को खास करके या पूरे भारत प्रदेश को कई भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तर पड़ोसी है, उत्तर मैदानी, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे मालवा निमार की बात है, ये मध्य प्रदेश के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड भाग, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी भाग एवं उड़ीसा उनके कुछ भागों को मिला करके मध्य क्षेत्र सोयाबीन की फसल के लिए उपयुक्त माना गया। तो उसके में आपको किस्मों का जो चयन करेंगे, जो अनुशंसित किस्में हैं भारत सरकार के द्वारा उसमें जेएस 20-34 है, जेएस 20-29 है, जेएस 20-69 है, जेएस 97-52 है, आरबीएस 2001-4 है, जेएस 95-7 है, जेएस 93-05 है, एनआरसी 7 है, एनआरसी 86 है, आरके पास आरकेएस 24 है, प्रताप सोया 45 है, एनआरसी 37 है, जेएस 335 है, और भी कई किस्में हैं, लेकिन मुख्यतः ये सब किस्में जो हैं अधिक उत्पादन देने के लिए उपयुक्त पाई गई है, खासकर मालवा निमार के क्षेत्रों में।
1: और प्रमाणित बीज के बारे में डॉक्टर साहब आप कहना चाहूंगा कि अपना किसान भाई बीज को चयन करते वक्त प्रमाणित बीज ही क्यों खरीदे?
2: प्रमाणित बीज खरीदने से 3-4 फायदे होते हैं। पहली बात, जो प्रमाणित बीज आप लेते हैं उसका न्यूनतम अंकुरण परसेंट 70% होता है, बाकी यदि प्रमाणित बीज नहीं रहेगा, अप्रमाणित रहेगा, उसके अंकुरण की सुनिश्चितता कोई नहीं कर सकता। जब आप प्रमाणित करेगा कोई भी ऑफिसर या अधिकारी, तो सबसे पहले सुनिश्चित करेगा कि 70% अंकुरण है या नहीं, यदि नहीं है तो पहले ही छांट दिया जाएगा। इसे प्रमाणित बीज हर हालत में आपको लगाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि प्रमाणित बीज यदि हम चुनाव कर लेते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो आधी उत्पादन क्षमता की कहानी जो है वहीं से शुरू हो जाती है।
1: सही है कि अच्छा और प्रमाणित बीज यदि अपना इस्तेमाल करेगा किसान भाइयों, तो अच्छे से अच्छे उत्पादन भी पाएगा। यह बात तो डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कही, पर आजकल कई जगह देखने में आई या कई जगह सुनने में आई है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए भी बोनी से पहला जब अपना किसान भाइयों व्यवस्था कर सकता है, तो बोनी से पहला अपना खेत में इस तरह को कई दवाई या फिर कई खाद डाले जिससे कि खरपतवार जो है वह नियंत्रित हो जाए या कम मात्रा में अपना खेत में लगे।
2: देखिए यह बात सर्वविदित है, खरपतवार अपना भोजन तो बनाते नहीं है, तो पौधे का जो उपयोगी पौधा होता है जैसे सोयाबीन है यहाँ पे, तो सोयाबीन के जो पोषक तत्व उसको मिलना चाहिए, उसके पोषक तत्वों को इस तरह से कहें तो हड़प करके अपनी वृद्धि बढ़वार करता, इससे उत्पादन तो प्रभावित होता ही है। हालत में ऐसी में सबसे बड़ी बात है कि फसल सुरक्षा हेतु आपको जो भी उचित संस्कृति है वह आपको ध्यान में लाना चाहिए। जैसे फसल सुरक्षा के कई और नीति नया आयाम है, जैसे जैविक है, कीट हो या बीमारी हो या खरपतवार है, अजैविक भी खासकर सोयाबीन में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जैसे सूखा हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, तब भी आपका उत्पादन गिरता है। दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आपको संसिद्ध टाइप की किस्में है कि पदार्थ बताए गए हैं उसको उपयोग करना चाहिए। रही बात खास करके जब आप सुनिश्चित करते हैं कि जिस किस्म का बीज उत्पादन किया जा रहा है वह उसी खेत में पिछले वर्ष न उगाई गई हो, तो वह भी एक खरपतवार का कारण बन जाता है। जब खरपतवार से आप चाहते हैं कि हमको नहीं हो घाटा, लेकिन घाटा हो जाए तो फायदा क्या, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा अवांछित कीट या रोगग्रस्त पौधे ये सबको ध्यान में रखते हुए आपको उत्पादन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि अधिक उत्पादन आप प्राप्त करें।
1: ये तो बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब आपने, पर एक बात और ध्यान में आ रही है कि बीज बोनी खरपतवार या खाद इन सब का साथे साथे अपना खेत की मिट्टी को परीक्षण करवाना भी अपने लिए बहुत जरूरी है, तो मिट्टी परीक्षण को अभी भी समय चली रही है, तो ऐसा हम अपना किसान भाई मिट्टी परीक्षण के लिए कई करें कि इस तरह से मिट्टी परीक्षण करवाएं।
2: मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे बढ़िया है जो उसके लिए बहुत सारे प्रयोगशालाएं राज्य स्तर पर भी संचालित होती हैं, केंद्र स्तर पर भी चालू होती हैं, और साथ ही साथ कॉलेज कृषि विश्वविद्यालय और साथ ही साथ कृषि महाविद्यालय में भी होते हैं। आपको इस चीज को सुनिश्चित करना होगा, वहाँ नमूना ले जाने होंगे, नमूना की विधियों कैसे को निकालना है मिट्टी से उसको ध्यान में रखते हुए मिट्टी ले जाए, और वहाँ से आप अपना प्राप्त कर लें नमूना का रिपोर्ट, और तब जाकर के जो भारत सरकार का सॉयल हेल्थ कार्ड इतना चिल्ला करके बताया जाता है, फिर भी यदि किसान भाई नहीं उपयोग में लाते हैं सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम को और उसको, तो उसके लिए खुद उत्तरदायी हैं। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा उनको कि सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो कि हर जिले में संचालित है उससे नमूना कैसे लें, कब लें, कैसे उसका रिपोर्ट लें, अब उस रिपोर्ट का फिर हम कैसे उपयोग करें,
1: जैसे
2: चार पांच बिंदु हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना चाहिए।
1: अब यदि हमारा किसान भाइयों ने मिट्टी परीक्षण कराई लियो तो डॉक्टर साहब यह बताओ कि अगली फसल के लिए मिट्टी परीक्षण किस तरह से उपयोगी रहेगा और किस तरह से फायदेमंद रहेगा हमारे किसान भाइयों के।
2: यदि आप यदि मिट्टी परीक्षण करते हैं तो यदि मान लीजिए कि आपका फास्फोरस है, फास्फोरस की मात्रा चाहिए पौधों को मान लीजिए 60 kg प्रति हेक्टेयर के रूप में, और ऑलरेडी उसमें 30 kg पहले से है, तो 30 kg है तो आप 60 kg क्यों देंगे, आप 30 kg दीजिए। यदि आपने 30 kg के बजाय 60 kg दीजिएगा तो वो 30 kg अनुपलब्ध रह जाएगा पौधों के लिए, और वह दूसरा कॉम्प्लिकेशन इशू करता है जटिलता, जटिलता ये करता है कि वो आपको फास्फेट जो है दूसरे पौधों के जो अवयव तत्व है उसको भी उपलब्धता में बाधक बन जाती है, और आपके पौधे को जो वास्तव में दूसरे अवयव मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और आपका उत्पादन बढ़ने के बजाय यदि आप 60 देते हैं तो घटता है। इसलिए उचित ही होगा कि हम 60 kg भी दें और उत्पादन भी घटाएं, इसमें हम उससे बढ़िया हम 30 kg क्यों नहीं दें।
1: सही है, हमारी मिट्टी में कौन कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित है वो अपने पहला से मालूम पड़ जाएगा तो अपने यो मालूम रहेगा कि अगली फसल के लिए अपने मिट्टी में कौन कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना है, उन्ना हिसाब से अपन डालेंगे तो स्वाभाविक ही अच्छे उत्पादन तो होगा जो होगा। डॉक्टर साहब आपने जो बात कही है हमारा किसान भाइयों से कि हम लोग सोयाबीन की फसल के लिए किस तरह से तैयारी करा, उन्हीं बात उनको हमारा किसान भाइयों जरूर ध्यान रखेगा और विश्वास है कि उन बात उनको ध्यान रखी के किसान भाइयों अच्छा उत्पादन पाएगा। तो डॉक्टर साहब आप हमारा साथ जुड़िया, हमारा किसान भाइयों की अच्छी जानकारी दी, इकलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: वाह भाइयों, हम उम्मीद करा कि हमारे जो किसान भाई बहनों ये जानकारी सुन रहा होगा, ये भेंट वार्ता सुन रहा होगा जो सोयाबीन बुआई से पहला की तैयारी के बारे में थी, जरूर से जरूर लाभ उठाएगा है ना, और अपना खेत में अच्छा तरीका से और उन्नत तरीका से खेती करेगा। और ये वार्ता हमारी सहयोगी बहन मनीषा शर्मा ने उनसे जई के बात करके ली थी, डॉक्टर डी के वर्मा साहब से उनके पास गई, उनसे जानकारी लेके आई थी और हम सबके बताई। तो भाई सुनने वाला के भी सबके ध्यान रखना है, और डॉक्टर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद दे दिए उनने न भाई। अब एक ख़ास बात और जो हमने सबसे पहला करी थी वह है कि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, कहना को मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी योजना ना रहे जो हमारे किसान भाई उनके मालूम भी नहीं पड़े, तो इनके सरों कहीं करनो अपने हेर रखनी, अपने जानकारी रखनी, अपना मंडी में जाओ तो वहाँ की जानकारी रखना, पंचायत में जाओ तो वहाँ से पूछ ही लेनो। और आजकल तो कितनी जगह अपन तो जैसे मोबाइल फोन भी चला है नहीं, तो उसमें भी जानकारी आए, तो अपन जो लोग थोड़ा भड़िया गुड़िया हैं वे इन बात की जानकारी रखे, और हमारे जो दूसरा भाई बहन होने उनके जो जानकारी दें। कितनी बार देखा कि जानकारी का अभाव में, जानकारी नहीं मिले इना चक्कर में, इन्हीं बात से जिनके लाभ मिलना चाहिए उनके लाभ नहीं मिले। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी हमारी है समाज के प्रति, अपना भाई बहन उनके प्रति, कि जिनके इना बात की जानकारी चाहिए, जिन्हें इना बात को लाभ मिल सके है, उन्हें उन बात की जानकारी पहुँचाने को भी अपनों एक पुण्य को काम है, अपनी मानवता है, अपनी समाज सेवा है। तो भाई लोग बात तो अपन और भी करता रहेंगे, पर सुना ये लोकगीत भाई शंकर लाल धोलपुरिया ने उनकी मंडली को गायो।
3: Hmm.

वाह भाई वाह, आनंद आयु। किसान भाई जैविक खेती करो, हम लोग तो कराई हैं और अपने बहुत सारा किसान भाई लोग भी जैविक खेती पे आ गया है, क्योंकि रासायनिक खेती का जो दुष्परिणाम है, उनका जो नुकसान है, वो हम सबके समझ में आ गया है। खेती करती वक्त किसान भाई को नुकसान न, जो उत्पाद तैयार हो जाए वो उत्पाद उपयोग करने वालों जो उनके अनाज है, दाल है, ये है, वो जो अपनी व्यक्ति अपना शरीर में जो

भाव चल रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति लक्ष्मीबाई नगर इंदौर, यहाँ का भाव आया है भैया जो सोयाबीन है, यहाँ 900 क्विंटल की आवक हुई है, न भाव रहा है 4850 से लेके 7200 रुपया, और मॉडल भाव रहे है 6625 रुपया। मॉडल भाव को मतलब जिसमें ज़्यादा सौदा हुआ है। गेहूँ जो है वो 5751 बोरी की आवक रही क्विंटल की, न भाव रहा भैया 2100 रुपया से लेके 2744 रुपया, न मॉडल भाव रहे हो 2520 रुपया। चना जो है भैया 42 बोरी की आवक रही, भाव 4900 रुपया क्विंटल से लेके 5465 रुपया, यानी 5465 रुपया तक का भाव रहे हो, और मॉडल भाव भी 5445 रुपये रहे हो। और मटर भैया बहुत कम रही आवक, आज एक बोरी की आवक रही 2985 रुपया को भाव रहे हो भैया। न अब बताई दूँ भाई कृषि उपज मंडी समिति संयोगितागंज अपनी छावनी मंडी का भाव इंदौर का। चना जो है भैया उनकी आवक रही 221 बोरी की, और भाव 4200 रुपया से लेके 8200 रुपया तक, बहुत अंतर आयो भैया, और मॉडल भाव रहे 5340 रुपया। मटर 13 बोरी की आवक रही, भाव रहे 3595 रुपया से लेके 3685 रुपया, और मॉडल भाव 3685 रुपया। गेहूँ की 2256 बोरी की आवक रही, भाव 2001 रुपया से लेके न 2871 रुपया, मॉडल भाव 2440 रुपया। मिर्ची भैया 261 बोरी की आवक, 6000 से लेके 17000 रुपया तक को भाव रहे हो। मूँग भैया 148 बोरी की आवक रही, भाव 2600 से लेके न 7665 रुपया तक को भाव रहे हो। और मक्का यानी भुट्टा उनको भाव बताई दो भैया, वो 15 बोरी की आवक न भाव 1723 रुपया रहा। सोयाबीन 447 बोरी की आवक, भाव रहे हो 4000 से लेके न 6680 रुपया। डॉलर चना 3310 बोरी की आवक, भाव 6000 से लेके न 8860 रुपया। इमली 42 बोरी रही, 3700 से लगाई के न 30000 रुपये तक को भाव रहे। तुअर की दाल 11 बोरी की आवक, भाव 6225 रुपया से लेके न 6525 रुपया का आवक रही भैया। न साथ में धनिया बताई दूँ 11900 रुपया को भाव रहे, और राजमा को भाव रहे 7210 रुपया। तो भाई लोग ये सब हो गया, अब बखत हुई लगी कि काल की बताई था सुबह गर्मी में लू से बचाव के बारे में खेती की बात में सुनाऊंगा, ना साझे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में वर्तमान कृषि स्थिति पे प्रगतिशील किसान भाई से चर्चा होगी। अब चला भैया ने सबसे कहा राम राम।

0: अभी किसान श्रोता सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये इंदौर केंद्र है मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में
1: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बढ़ता दायरा। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर देवाशीष प्रूस्ती, एडिशनल सेक्रेटरी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वित्त मंत्रालय, और मिस सुमित कौर कपूर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PFRDA। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
3: हम शुरू करना चाहेंगे देवाशीष जी आपसे। 11 वर्ष हो रहे हैं तीन योजनाओं को जो जन सुरक्षा योजनाएं हैं, जिनमें पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इसे आप कैसे देखते हैं, भारत के सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यह कैसे मजबूत कर

0: रहा है और पिछले 11 वर्ष में इसकी यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं और इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी।
1: आज 11वां सालगिरह है। दो महत्वपूर्ण जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी तारीख को 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों एक्चुअली एक कम लागत वाला जन सुरक्षा योजना है जो कि सुरक्षा कवच बनाकर भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को काफी मजबूत किया है। इन योजनाओं में जो हमारे पात्र ग्राहक, विशेष रूप से जो गरीब और जो दूर दराज क्षेत्र में जो वंचित ग्राहक है, उन सभी को 2 लाख रुपए का ये आवश्यक जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं और उनके वित्तीय समावेशन को ही बढ़ावा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आम नागरिकों के जीवन में कोई अगर ऐसे अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाता है तो उनको समय पर ये वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है। इन योजनाओं की एक बड़ी उपलब्धि इनकी सरलता, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, कम प्रीमियम और वित्तीय समावेशन पहलों के तहत बैंकों की जो तमाम शाखाएं हैं और पोस्ट ऑफिस के तमाम शाखाएं हैं, ये सभी इनके डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े हुए हैं। तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है और वित्तीय जागरूकता को भी बढ़ाया देता है। और सबसे बड़ी बात है कि औपचारिक जो वित्तीय प्रणालियां हैं, जो हमारे फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, उनमें नागरिकों के विश्वास को ये मजबूत किया है। मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा। अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लगभग 27 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं और इसके अलावा शुरुआत से अब तक PMJJBY के तहत लगभग 1,60,000 लाभार्थियों को 21,200 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान किया गया है और इसी प्रकार PMSBY में 1,80,000 लाभार्थियों को लगभग 3,600 करोड़ रुपए का दावे का भुगतान किया गया है। और ये जो क्लेम भुगतान किया गया है, इसकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होती है वो लगभग 99.5% से ऊपर है। कहने का मतलब है कि अगर 100 दावे कंपनी के पास आते हैं तो उनमें से 99.5 दावों का उन्होंने भुगतान कर दिया है। यही एक विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाया है।
0: अब इसके पूर्व अगर हम आपके पास आएं और बात करें अटल पेंशन योजना की, तो ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण अगर हम इसे कह सकें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एक तबका है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिनके पास एक रेगुलर नौकरी नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है या जिसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज वे में वो काम करते हैं, तो उनके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक उतना ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन जाता है, खास करके जब वो 60 की उम्र को पार करते हैं। तो इसके मद्देनजर अटल पेंशन योजना, जहां तक हम समझते हैं, इसने काफी हद तक इस कंसर्न को एड्रेस करने में मदद की है और आंकड़े बताते हैं कि 9 करोड़ से भी अधिक लोगों ने नामांकन करवाया है इस योजना में। तो आप इस बढ़ती ग्रोइंग पार्टिसिपेशन जो है इस योजना में, इसे कैसे आप देखती हैं और कैसे इस योजना की जो शुरुआत हुई और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी लोगों में, ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, कैसे देखती हैं आप इसे?
2: हमारे यहाँ 85% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी रेगुलर इनकम तो होती नहीं है। जब उनके पास काम हुआ तो इनकम आ गई और जब काम नहीं है तो इनकम नहीं है और वो अपने आज के खर्चे के बारे में सोचते हैं, दूर के बारे में सोच नहीं पाते।
0: जी जी बिल्कुल।
2: तो इस कारण से वो अपने 60 के बाद का तो वो बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। तो इस दिशा में जब हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारी सोसाइटी जो है, जो आज यंग है, आज युवा है, पर धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेगी ये पीढ़ी, और आज जो 10% हमारी जो जनसंख्या है वो सीनियर सिटीजन या कहिए कि 60 से ऊपर है, परंतु 2050 आते आते तक ये 20% हो जाएगी और हम करीब 30 करोड़ लोग ऐसे और जोड़ देंगे जो 60 को पार कर जाएंगे। और अगर इन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए या अपने वृद्धावस्था के लिए अगर कोई प्लानिंग नहीं की तो इनके पास इनकम का या आय का कोई भी स्रोत नहीं होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए पेंशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का या फिर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही एक हक नहीं है, बल्कि ये सबके लिए होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मई 2000 15 को अटल पेंशन योजना का जो है अनाउंसमेंट किया था। और आप देखिए कि इसी में जब पेंशन का कॉन्सेप्ट भी लोगों को नहीं मालूम था कि उनके लिए भी रिटायरमेंट इनकम कुछ हो सकती है, ये उनको नहीं मालूम था, परंतु इसी दौरान 9.6 करोड़ लोग अब अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। और इसका कारण ये है कि ये बहुत ही सरल योजना है। उनको सिर्फ बताया जाता है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आपने अगर सिर्फ 42 रुपए प्रति माह जोड़ दिए 60 साल तक, तो आपको 1000 रुपए इनकम आपको मिलने लगेगी, आपके बाद आपके पति या पत्नी को मिलने लगेगी, और जितना पैसा आपका इकट्ठा हुआ है पति पत्नी के गुजर जाने के बाद आपके नामिती को भी मिलने लगेगी। सो ये जो तीन बड़े बड़े उनको जो लाभ मिलते हैं सिर्फ 42 रुपए अगर आप 18 साल के हैं जुटाने पर, तो उनको भी समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक बुढ़ापे का सहारा इकट्ठा कर रहे हैं। कहा जाता है कि आजकल के जमाने में जैसे हम दो बच्चे होते हैं हमारे, तो पेंशन का जो खाता है वो हमारा तीसरा बच्चा है और उसको उतना ही ख्याल रखना है हमें, हमारे को उसको वैसे ही बड़ा करना है क्योंकि वो आपका ख्याल रखेगा बुढ़ापे का। ये दो बच्चे तो रहेंगे आपके साथ पर उनपे निर्भर क्यों होना है, वो आपके आसपास रहेंगे इमोशनल सपोर्ट के लिए, पर ये तीसरा बच्चा आपका बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, तो इसका आप अभी से इसको बड़ा कीजिए। इसीलिए इस अटल पेंशन योजना जो है काफी लोगों ने अपनाई है और इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बैंकों में हर शाखा को हम टारगेट देते हैं और वो सरलता से समझाते हैं और लोगों ने इसीलिए अटल पेंशन योजना को अपनाया है।
0: तो मिस कपूर, अगर हम बात करें आयु सीमा की, कि क्या कोई जैसे 18 वर्ष की बात आपने की कि 18 वर्ष का जब व्यक्ति एक बार हो जाता है तो इस योजना में वो नामांकन अपना करवा सकता है, तो कोई पूरी सीमा भी कोई है आयु की है?
2: जी, 18 से 40 वर्ष, क्योंकि 20 साल का समय चाहिए आपको उतनी मात्रा इकट्ठा करने के लिए कि वो आपको एक रेगुलर इनकम दे सके, तो इसलिए 18 से 40 तक आप इसमें एनरोल करा सकते।
0: जी देवाशीष जी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, हम समझना चाहेंगे कि इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जैसा आंकड़े बता रहे हैं आपने भी बताया 27 करोड़ से अधिक एनरोलमेंट हो चुके हैं और इतना जो ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इसमें जो भागीदारी हो रही है जनता की, वो स्वाभाविक रूप से ये जताता है, ये हमें बताता है कि किस हिसाब से और किस तरह हमारे जो जनता है वो इस योजना में उन्हें ट्रस्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं।
1: जैसे कि मैंने पहले बताया कि आम आदमी के जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसे अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस आते हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए ये जो योजना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और ये योजना जैसे 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता है, और जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार है उनको एक सहमति पत्र देना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही सरल है और उसमें ऑटो डेबिट की सुविधा भी जो है दी गई है। इस योजना के तहत जो जोखिम कवरेज है, जो रिस्क कवरेज है, वो 2 लाख रुपए तक का है, और जो बीमित व्यक्ति है इंश्योर्ड है उसकी मृत्यु होने पर किसी भी कारण से, कोई ऐसे कंडीशन नहीं है, तो ये मैच्योरिटी सम 2 लाख रुपया उनको तुरंत दे दिया जाता है उनके परिवार को। इसके लिए जो सालाना प्रीमियम है वो केवल 436 रुपया है, जो कि ग्राहक के बैंक या उनके जो पोस्ट ऑफिस से ऑटो डेबिट किया जाता है, उनको बार बार परेशानी नहीं होना पड़े कि बैंक के या पोस्ट ऑफिस के पास जाने के लिए। उन सभी लोगों की सुविधा के लिए जो पॉलिसी अवधि के बीच में अगर पहली बार इस योजना के तहत नामांकन कर रहे हैं तो उनका एक प्रोराटा प्रीमियम का भुगतान भी करने का प्रावधान है। मान लीजिए कि किसी ने दिसंबर में अगर ज्वाइन किया है तो उनको पूरे साल का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है, उनका जो है प्रोराटा जितने महीना उस वित्तीय वर्ष में बचते हैं उनका प्रीमियम देना हो। एक इसमें कंडीशन इतना ही है कि नामांकन की तारीख से एनरोलमेंट की तारीख से 30 दिन की जो है अवधि को लियन पीरियड कहते हैं, और इस योजना में नामांकन की तारीख से पहले 30 दिनों की अवधि के दौरान अगर कोई उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बीमा कवरेज उनको नहीं मिलेगा और उसके पश्चात रिस्क शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अब तक 21,000 करोड़ रुपए के जो है दावे का भुगतान किया जा चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े मैं रखना चाहूंगा कि ग्रामीण जो लाभार्थी है लगभग 17 करोड़ है, जो कि बैंक एनरोलमेंट के 73% है, और हमारे महिला लाभार्थी जो है उनकी संख्या लगभग 12.70 करोड़ है, जो कि कुल बैंक एनरोलमेंट के 54% है। तो ये आंकड़े जो है इस स्कीम की लोकप्रियता और समावेशिता और आने वाले समय में इस पे और मास रूप में जुड़ने के लिए एक स्पष्ट संकेत देती है।
0: हम आपसे समझना चाहेंगे, और बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की यहाँ, क्योंकि ये योजना किस तरह से काम करती है और किस तरह से एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है अगेंस्ट एक्सीडेंटल रिस्क, जो कि आम जनता को फेस करना पड़ता है अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में। ₹20 प्रति वर्ष के प्रीमियम पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें प्रदान करती है, और आंकड़े बता रहे हैं।

0: कि ये लगभग लगभग 58 करोड़ से भी अधिक नामांकन अभी तक हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक यूनिक सा एक स्कीम है। तो ये जो इनिशिएटिव है भारत सरकार की, इसे कैसे देखती हैं और कितना ये महत्वपूर्ण है, क्या स्थान रखता है हमारे आम जनता के जीवन में?
1: ये योजना एक्चुअली 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए सरकार ने लागू किए हैं जिनका किसी भी बैंक में या डाकघर में अकाउंट है, सेविंग बैंक पासबुक है। और इस योजना में भी शामिल होने के लिए उनको एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए अपनी सहमति देना होता है। और इस योजना में जो रिस्क कवरेज है कि अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाते हैं या फिर अगर की पूर्ण स्थायी विकलांगता जिसको कहते हैं परमानेंट डिजेबिलिटी की स्थिति में 2 लाख रुपया, और अगर आंशिक डिजेबिलिटी हो जाती है एक एक्सीडेंट में तो उनमें 1 लाख रुपया का जो अश्योर्ड है वो मिलता है। और ये कवरेज केवल साल की 20 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर मिलता है। खातेधारक की बैंक या पोस्ट ऑफिस से सीधे ऑटो डेबिट हो जाते हैं, उनको बार बार बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार की प्रोडक्ट से अब तक 58 करोड़ से अधिक नामांकन होकर 3600 करोड़ रुपए के जो है दावा के भुगतान किया जा चुके हैं। यहाँ तक हमारे ग्रामीण लाभार्थी हैं वो लोग करीब 38 करोड़ इनमें जो है नामांकित हो चुके हैं, और हमारे जो महिला हैं वो करीब 27 करोड़ इनमें नामांकित हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है वित्तीय समावेशन का एक स्पष्ट द्योतक है।
0: हम इसका पूरा आपके पास हम आना चाहेंगे। ये 11वां वर्ष है जब इन योजनाओं की शुरुआत हुई 2015 में। साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवाशीष जी ने भी बताया कि किस तरह से और खास करके ग्रामीण इलाकों में जो जनता का समावेशन हुआ है ऐसे स्कीम्स में और किस तरह से लाभ पहुंच रहा है उन लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वर्षों में आप किस तरह से देखती हैं इन योजनाओं का विस्तार और साथ ही साथ कुछ और नई संभावनाएं अगर आपको दिखती हो तो?
2: जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि अब तक इसमें 9 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। अब ये वित्तीय समावेशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, चाहे वो ग्रामीण से हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो गिग वर्कर्स हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। इसमें लगभग 50% प्रतिभागी जो है वो महिलाओं की है और 25,000 ट्रांसजेंडर भी जुड़ चुके हैं। और इन्होंने छोटे छोटे सेविंग्स करके अब तक इसमें AUM जो है वो लगभग 51,000 करोड़ से ऊपर है। सो अब जो हमारा जो टारगेट है 2031 तक का वो लगभग 17 करोड़ का है। सो हम इसको डबल के करीब ले जाने का सोच रहे हैं। जो पिछले 9 साल में किया वो अगले हम 5-6 साल में करेंगे। और दूसरा जो AUM है वो भी नेचुरली जो पुराना AUM है उसके ऊपर ग्रोथ होगी, 8-8.5% की ग्रोथ उस पे 9% की हो रही है, और भी कंट्रीब्यूशन आएगा। सो AUM भी बढ़ेगा। सो इसका हमारे को डबल लाभ होता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो माइक्रो लेवल पे है जो नागरिक है उनके लिए ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी का एक रास्ता खोलते हैं। दूसरा जो ये AUM एकत्रित होता है ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो इस तरह से पेंशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल पेंशन फंड्स का। और इससे हमारी वित्तीय समावेशन में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
0: देवाशीष जी, सुमित जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, अपने विचार रखे, साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कर तो देखो, जरा दिल की दुनिया सजा कर तो देखो। तुम्हें हो न जाए मोहब्बत तो कहना, जरा हमसे नजरें मिला कर तो देखो।

0: मालवा की शान।
1: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत,
0: तो सुनते रहिए।
2: मेरे इस दिल में ए सनम तेरे ख्वाब सजाऊंगा, आजमा के देख ले तेरे दिल में बस जाऊंगा। प्यार का हूं प्यासा तेरे आगोश में यूं ही मर जाऊंगा।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: पर सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: आंखों की गहराई में तेरी खो जाना चाहता हूँ, आज तुझे बाहों में लेकर सो जाना चाहता हूँ। तोड़कर हदें आज सारी तेरी इन नशीली आंखों में मैं डूब जाना चाहता हूँ।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: जैसे मेरी निगाह ने देखा हो न कभी, महसूस ये हुआ तुझे हर बार देखकर, बस यूं ही मेरे मुस्कुराने की तुम वजह बने रहना, जिंदगी में ना सही मगर मेरी जिंदगी बने रहना।

श्रोताओ, अब दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे दिल से। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

0: और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवीके 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई

0: विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रूपये से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रूपये के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देशभर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

0: और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमरीकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमरीका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमरीका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष, विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वामदलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office.

0: Spotlight.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के इस गीत से। इस गीत को गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। शमीम जयपुरी की शब्द रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। लीजिए सुनिए दो रास्ते फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: जिसे गाया है लता मंगेशकर, शमशाद बेगम।

0: लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों के गाए मुगले आजम फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।
1: अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं।
2: शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म।
1: ढूंढो पंत तेंदुलकर पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से

मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दी कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात कर रही हूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ है।
0: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की

0: एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
1: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
0: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
1: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
0: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां सात समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
1: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
0: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे दो तीन वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसिल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप हैं जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगवाया है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए

0: ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
1: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में, और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के दो टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
2: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
3: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
2: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
3: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।
4: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
5: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना डीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, इससे कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे अपने शेखावटी की हवेलियाँ मैंने बनाई है, इससे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। हमेशा मेरी कोशिश होती है।
6: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे।

0: बचपन से, तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे ये आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भालुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
1: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है, जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें सभी
2: वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
3: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
3: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
5: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।

0: पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
1: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
2: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
0: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पीवी काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम वल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
5: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग जनसम्मोहिनी। Continuing his recital, he now presents Raag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती ये नदिया ये रैना
2: और
3: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: मीडियम वेव 462.6 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री

0: श्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Nabin and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Sathisan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate